आधार सत नाम नु आधार बनाओ, परमेश्वर की बंदगी नु आधार बनाओ। आओ हुण रीढ़ की हड्डी सिद्धि करो, समा दौड़ चलिया है। मेरा सतगुरु कृपा करे कुछ समा नक की कुरुंबड़ी ते सुरत टका के अंदरले विचार बंद करके जप के वेखो, मेरे सतगुरु का अमृत डोलन लग पैंदा अंदरों। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। ये जपया करो अमृत वेले उठ के, अमृत वेले खुराक खाया करो, सर्व रोग का औखद नाम बोलो।

नानक दास सदा कुर्बानी तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाने मैं मूर्ख किश दीजै।

0: चरण
1: कमल तेरे तोए तोए
0: चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे

नाम साचा नाम मेरा आधार। सच्चा नाम मेरा आसरा है, सच्चे परमेश्वर का नाम मेरा आसरा है। कलयुग दे विच मेरी इज्जत पत रखण वाला मेरे को इको ही गहना है, इको ही परमेश्वर की टोक है दिती हुई जिहड़ी सतनाम श्री वाहेगुरु। नाम वालियां दे अपने सेवक दे पर्दे ढकदा है, अपने सेवक की लाज पत रखदा है। जिहड़े नाम जपदे ने ना उहनां नूं मेरे साहिब जी कहिंदे ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरध संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। जेड़े नाम जपदे ने उहनां नूं रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भात बचावे उहनां ते शतर अनेक चलावत कहावत उतन एक ना। कितना रखदा जी, कितना बचाउंदा है, राखत है अपनो कर दे कर कर मने हथ उहनां नूं अपना हथ दे के बचा लैंदा। राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न पेटन पावे और की बात कहां कहतो सो सो पेट ही के पट बीच बचावे। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये ए वड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुट्ठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया कि जिथे अग्न भखे पड़हारे अग दे लाटां बलदियां सी इहदे चार चफेरे जीव दे उर्द मुख महा गुबारे पुट्ठा मूह थले नूं लत्तां तां नूं ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच अग विच जल रिहा सी विचारा। मगर उथे ए जप रिहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। उथे जदों जपदा सी ना इतना शब्द लिखे एकाग्रता बख्शे आखो सतनाम श्री जिथे अग्न पखे पढ़हारे उर्द मुख महा गुबारे ते ध्यान देना है। उथे लिखिया सास सास संभाले सोई, ए सास सास उस वाहगुरु नूं याद करदा सी। उथे अग दे विच गुरमुख प्यारियो ए 24 घंटे वाहगुरु दी याद विच जुड़िया सी ते उथे फिर अग दे विच उथे खसम छडाए लिया इनू उथे पुठे लड़के नू उथे खसम छडाए लिया। बोलो हां उथे खसम, फिर बोलो उथे खसम। उथे पुठे लड़के नू किन्ने छडाया, खसम दे वाहेगुरु ने। ते जदों इथों छडा के बाहर लै आंदा इतना लिखिया है विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गज के आख्या करो उस फोटो नू वेख के, उस तस्वीर नू वेख के कि उथों छडा के किसी ने गवाही दे के एदी जामनी भर के किसी ने उथों छडा के बाहर लिया। विच्चों गर्भे निकल आया, बोलो विच्चों गर्भे निकल आया। जो बाहर आया खसम वसार दुनी चित लाया, खसम वसार दुनी चित लाया। फिर बोलो खसम वसार दुनी चित लाया। बस विच्चों बाहर आया ते ओ जिहड़ा छडाउण वाला सी ओ भुल गया, दुनिया चेते आ गई, मम्मी चेते आ गई, चाचा चेते आ गया, नानी चेते आ गई, फुफी चेते आ गई, हुण ए चेते ने। ते माया अमर वरताया, माया दा हुक्म चलन लग पिया। मेरे सतगुरु कहिंदे जैसी अगन उधर मैं तैसी बार,
ਮਾਇਆ ਜਿਤਨਾ ਅਗਨ ਅੱਗ ਦੀ ਅੰਦਰ ਚ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੜ ਜੂੰਗਾ ਆ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਪਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਉਹਨੇ ਛਡਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਇਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਰਬਾ ਸੰਖਾ ਨੀਲਾ ਰੂਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਗਈਆਂ ਈ ਜੇ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु नानक की कृपा का सदका ए नेत्रा भी रोशनी आई। ए खबर जड़ी आ अजीत अखबार दो जगह ते लगी मगर जिनी लगनी चाहिदी सी हुण साडे वारी नहीं टीवी ते विखाया साडे वारी नहीं टीवी ते बार बार खड़िया करके विखाया उस बच्चे नूं कि इस बच्चे दियां अखां दी रोशनी गुरु रामदास ने बख्शी। चंगा पॉइंट जिहड़ा इस कौम का वा उहनूं को हाईलाइट करदा ही नहीं हर बंदा इस कौम का। मैं एक बार मन विच सोचिया कि हे वाहिगुरु पिता जी इस सिख कौम दे पल्ले क्यों दुनिया पै गई सारी इहदी दुश्मण क्यों बन गई। जवाब आ गया परमजीत सिंह सच का झूठ हमेशा ही दुश्मन रहा चानण ते अंधेरे नूं आउंदा डर के जिद्दण चानण सारे फैल गया मेरी जगह ही नहीं रहनी मेरी थां ही नहीं रहनी। किसी ने उल्लू नूं पुछया उल्लू नूं ध्यान दिओ जी किसी ने उल्लू नूं पुछया कि सूरज कदी वेख्या ही ते उल्लू वाकया ही नहीं सी कदी वेख्या किया गल्लां जीवन दे दिंदियां भाई साहब सिमरन कई दिन का बंद हो गया। मैं की होया कहिंदा इत्थे एक मक्सीका आंदा फुल पहना जिहा ते ओह रोज मैनू कहिंदा लै मैनू कागज ते कुछ लिख दे ते कहिंदा मैं दो कु दिन ते लिख दिंदा रहा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त जूनी साहिब भंग ते कदी कहिंदा मैनू आइसक्रीमां दे नां लिख दे कदी कुछ लिख दे ते भाई साहब जिद्दण दा मैं लिख के देना वा उद्दण दा मेरा सिमरन बंद हो गया। मैं कहा वाह वाह गुरु दिया सिखा विश्वास हो ते तेरे वर्गा जिहड़ा मिंटा च कड़ाच करदा टुट जाए किते विश्वास कर बाबे कबीर वर्गा भगत रविदास वर्गा साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तोरी किते विश्वास कर गुरु अर्जन देव साहब वर्गा मूह लाल।

सबना का खसम है। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे, कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारियो गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार विच आण के, गुरु सत्कार विच आण के, आप जी सर्वत माई भाई तनता दे जोग राजान राज पानान पान देवान देव महान सतगुरु के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशल सलाम हैं, समस्तल कलाम हैं। समस्तल कलाम सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जिन दुनिया दे मालिक पातशाह जी चरण शरण विच आण के आप जी ने बड़े प्यार ते अदब सत्कार दे नाल जिथे गरीब नवाज पातशाह दी बाणी सरवण कीती, नितनेम साहब सरवण कीता है, उथे कीर्तन विच आप जी सरवण कर रहे। सो भाई रे राम कहो चित लाए, बोलो भाई रे मन नू मुखातब करके भाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर लै चलो शौ देखे पतियाए, हरी दे जस दा सौदा करके जाओ भाई, परमेश्वर खुश हो के आप जी नू गल नाल लावे। शौ देखे पति आए, सतगुरु गरीब नवाज आप जी नू गल नाल लावे। मेरे सतगुरु जी अगे जाके जड़ी जोदड़ी कर रहे ने, आओ सारे पढ़िए वणज।

पंडा बन के जाओ, इथो जाके लाद खेप संतें संग चाल जिस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतन घर पाया, ताजब मान लिखो मन मोल राम नाम हिरदे में। लाद खेप गड्डे लद के जदों सरकारे दरबारे जावे तू निरंकार दे दरबार विच, उथों तक तेरे गड्डे खलोते होण ते पुछण भाई कौन आया है, ते आखणे पजनीक सिंह आया है, ए जरनैल सिंह आया है, ए रजिंदर सिंह आया है, ए गुरु का प्यारा आया है, की करके जी ए गड्डियां दे विच की भरिया है, ते किते ऐसा ना होवे फोल फोल के वेखीए ते विचों चुगलियां निकलण, विचों निंदिया गड्डे ते दोवां दे लदे जाणे ने, चंगियाईयां बुरियाईयां बोलो चंगियाईयां, फिर एक बार आखो कादे गड्डे लदे जाने, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हजूर, उस धर्म दी हजूरी विच जाके धर्मराज दे हजूर विच दो ही चीजां ते परखियां जानियां बंदिया तेरियां, चंगे ते मंदे कर्म, ते वेख कोई एहो जिहा कर्म कर तेरी एक एक पंड दे विचों निकले सतनाम श्री वाहिगुरु, तेरी एक एक कहो नानक समझ रे आने, आज काल खुले तेरी गांठुली, बोलो आज काल खुले तेरी, आप बचन जरा चंगी तरह बोलो कि अज जा कल उथे जाके तेरी गठली खुलनी, गांठुली गांठुली मैंने गठ, इथो जज हुंदा बाणी विच मेरे साहब कहिंदे ने कि गठा मार रहा बंदा हर रोज इहदियां गठा बन रही ने, ते कहिंदे कहो नानक समझ रे आने, बोलो कहो नानक समझ रे, हे मेरे आने मना, हे आने जीव ए गल समझ ला कि आज काल खुले तेरी गांठुली, बोलो आज काल खुले तेरी, उथे निरंकार दे दरबार च तेरी गठ खुलनी है, चेता कर उस गठ दे विचो की निकलूगा, किते चुगलियां ना निकलना, किते निंदिया ना निकले, किते शराब दियां बोतलां ना निकलना, किते मास ना निकले, किते कुकर्म ना निकलना, जेड़ी जेड़ी तेरी गंढ परमेश्वर खोले उहदे विचो निकले सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, भैणो गज के, सतनाम वाहेगुरु, मेरियां धीआं गज के जरा बोलो।

0: सगल भवन के नायका, सगल भवन के एक छिन दर्स दिखाए जी, एक छिन दर्स दिखाए जी, एक छिन
1: दर्स दिखाए जी, एक छिन दर्स दिखाए जी।
0: हाथ जोड़े तरले पाए, कुटिया विच बैठे कोड़े ने सिख ते प्रशादा सुट के चले गया, मगर एदे तरले ते एदियां बौड़ियां ओ जिहड़ा विण बोलिया सब कुछ जानदा है ना। एक भाई गुरदास जी ने बचन पढ़िया, आखो सतनाम श्री, कहिंदे जे रब नू आवाज मारना हाथी ते कीड़ी, ध्यान दियो हाथी ते कीड़ी, हुण हाथी बड़ा उच्ची कड़ाउंदा है ते कीड़ी बेचारी दी आवाज किन्नी है। ते भाई साहब नू पुछया जे हाथी आवाज मारे कीड़ी आवाज मारे ते रब दे घर केदी पहलों पहुंचदी, ध्यान दियो केदी पहलों पहुंचदी। ते भाई गुरदास जी कहिंदे ने कीड़ी दी पहुंचदी, क्योंकि नमाणी होके आवाज मारदी, क्योंकि ओ नमाणी होके नताणी होके आवाज मार दी है। इन्हे भी नमाणे नताणे होके बेनती की, हे साहबा सारे पिंड वालिया कोल चरण हैगे, हथ हैगे, अखां हैगियां, मैं ते गरीब एक आदमी ते मेरे मन विच भी हुण चाह पैदा हो गया है, दर्स तेरे की प्यार।

वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़फ पैदा हुई हो, ऐनी वो तो बिना उदास हो गई है, सिर देन नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे प्रिया रंग रंगारे, मेरिया अखा ओ रंग विच रतियां गई ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसीं वी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

आख्या दो चार दिन कट मैं आऊंगा। उन्हें कहा ना नैन हमारे फिर आए रंग रंगारे एक तिल पी ना तरीजे हुण ते एक तिल मात्र धीरज नहीं कर दे ए ते इश्कों इथो तक पहुंच गया प्रभ स्यों मन लीना प्रभु दे चरना च मन इतना लीन हो गया कितना ज्यो जल मीना जितना जल तो बिना पानी तरफ तरफ के मर जांदी है मच्छी इतना सजना हुण जे एक मिनट परमेश्वर नहीं मिलदा ते मेरी हालत ए होगी मच्छी वर्गी मैं तड़फ तड़फ के मर जूंगी। प्रभ स्यों मन लीना ज्यो जल मीना चातरक जिवें तसंतिया जितना चातरक तरसदा वा उस बूंदली वो मेरी हालत होगी। सजना एक बार किते मिला एक बार ओदी खबर दस मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया दे मालक जी कहिंदे ने फिर उन्हें आख्या आ दसा ओदे मिलन दी निशानी आखो सतनाम श्री सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी तुहाडे विचों भी किसे नूं प्यास लगी होवे तुहाडे विचों भी किसे नूं भुख लगी होवे ते मेरे मालक दी बाणी विच लिखिया सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी मन तन अर्प तज लाज लोकानी मन तन दे दे लोकां दी शर्म छड़ दे आ जिहड़े मेरे वीर

0: एक पोरी दर्शन दी जय एक पोरी
1: दर्शन दी जय एक पोरी दर्शन दी जय।
0: एक वचन होर बड़ा सुंदर गुरु नानक साहब ने विछोड़े का किया है। आज जो हुण आ महीना मुकना है ना ते अगला महीना पता चढ़ना है ते तुसी सारियां संगतां ने कर्मां वालियां रूहां ने जुड़ के कहना भैणे

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े आने मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चोर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या वो दे सामने उदी फोटो दे चोर करदा सा कहिंदा जी उदी सामने उदी फोटो दे चोर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चोर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख्त दा मालक ते धरती ते एको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जिते चौर हो सकता है होर किसी चौर नहीं हो सकता 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखां गुरमुख प्यारियां ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकता है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकता है ते गुरमुख प्यारे इहदी फोटो दे उत्ते उहने चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उहने मंजी दे थले रखे जांदिआं दास ने पहलों मारी फोटो भवां के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान उहनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे हो बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्स दिखाए जी एक छिन दर्स दिखाए जी एक आओ हुण जुड़िए नाम जप लो दो छिन फिर सतगुरु गरीब नवाज पातशाह मैं आप जी नूं बेनती कर दवा नामी ताई पहुंचण ला इको ही तरीका है नाम नाम ते नामी दो चीजां दा मेल आ जे नामी दी प्राप्ति करनी आ ते नाम जपना पैना है की करना पैना है नाम जपना पैना है रात दिन अपने रोम रोम विच भरना पैना है वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

बड़े प्यारे वचन ने, समझण दी कोशिश करियो। एक बार आखो सतनाम श्री वाहे। खोजद्या खोजद्या ओ अमृत मिल गया। जेड़ा अमृत पीण दे नाल जीव अमृत अमर हो जांदा है। अमृत पीवे अमर सो होए। बोलो अमृत पीवे अमर सो होए। एह हर रस पावे जन कोए। कोई किते करोड़ां दे विच्चों नहीं, तो छोटे छोटे संख्या ने अमृत तो दूर रख लेना है। जेदे ते सतगुरु गरीब नवाज बाबे नानक दा हर दरवाजा मेहर दा जेदे घर नूं खुल गया, ओदी रूह ने आखना चलो अमृत छकीए गुरु वाले बनी है। नहीं तो निके निके फुरनिया ने एवें निके निके फुरनिया ने गुरु दे अमृत तो वांझिया कर देना है। एहो हर रस, बोलो एहो अमृत की आ, हरी दा रस आ। एहो हर रस पावे जन कोए। कोए दा मतलब कोई करोड़ां दे विच्चों जेदे ते मेहरबान बापू होवे, ते जिन्हां नूं इह हरी दा रस मिल गया अमृत नाम आ उस हरी दे रस दा, ते साहिब कहिंदे ने अमृत पीवे अमर सो होए। अमर हो गया। अमर दे अखरी अर्थ समझो अमर। अमर शब्द आपां कहिंदे कई वार बहुती वार ते पता नहीं हुंदा सानूं। अमर मरन तो रहत, जिन्हें हुण मरना ही नहीं। साहब कहिंदे ने इह पक्की गल आ, जिस जीव दे मूंह दे विच अमृत पै गया उन्हें नहीं मरना मुड़ के। अमृत पीओ सदा चिर जीवो। हुण सदा चिर वाला जीवन मिल गया। रोज रोज दा आवा गमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुर देव। सतगुरु कहिंदे ने जिहड़ा आवा गमन दा चक्कर आ जीव आत्मा दा, जदों गुरु दी शरण विच आउंदी आ, गुरु दी पनाह विच आउंदी आ, गुरु दी बारगा विच आण के डिग के अमृत दी दात मंगदी आ अपने बापू दे कोलों, ते जन्मां दी विछड़ी होई नूं जदों अमृत मिल जांदा है, उस दिन इहदा आउण जाण दा चक्कर मुट गया। आवा गमन मिटे। बोलो आवा गमन। बड़ा ढिल्ला बोलदे हो, गज के बोलो। बाबा नानक तुहाडे ते मेहरबान होवे। आखरी दीवाने अज पता नहीं नदी नाम संजोगी मेले ने रस बख्शो। दास नूं भी सेवक दिओ, सेवा दिओ। आवा गमन मिटे। बोलो आवा। कदों प्रभ सेव, जदों प्रभु दी सेवा विच हाजिर हो गया, जदों आप त्याग शरण गुरदेव, आपा छड के त्याग के गुरु दी शरण विच जीव आत्मा डिग पई ना आण के, ते साहिब कहिंदे ने उदन इहदा आवा गुण मिट गया। इउ रतन जन्म का होए उधार। ए रतन जन्म दा उधार हो गया, एदा भला हो गया जीव आत्मा दा। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहिंदे ने ए जिहड़ा हरी दा रस आ जिन्हां नूं मिल गया अमर हो गए। उन्हें मुड़के मुड़ना नहीं, उन्होंने मुड़के किते नहीं आना। कोई जीव आत्मा चक्कर दे विच ना उस दिन तो ए अमर हो गई जिदन तो इनू अमृत मिल गया। अनंत अनंत जन्म की बंदगी करने वाले बहुत सारे लोग जिन्हों अमृत नहीं मिलिया, मैं सतगुरु की हजूरी विच मेरे गुरु की फिलोसफी मुताबिक कह रहा वा कि उन्हों का आवागमन नहीं मिटदा, जिहड़ियां रूहां अमृत नहीं छकदियां। आखो सतनाम श्री। फिर आना पैंदा है, फिर आना पैंदा है, फिर आना पैंदा है। कहिंदे जी असीं बाणी बड़ी पढ़दे हां, सिमरन बड़ा करदे हां, जे अमृत ना छकीए ते साडी गति नहीं हो सकदी। नहीं हो सकदी। ए डंके दी चोट ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज दे विचारां मुताबक दास राव जी दा कह रहा है कि जिन्ना चिर जीव आत्मा अपना सिर दे के गुरु दे चरणां विच मिटदी नहीं, जिदन मिट गई उदन बन गई, जिदन मिट गई उदन ही बन गई। जिन्ना चिर मिटदी नहीं, जिन्ना चिर आण के डिगदी नहीं चरणां दे विच, उन्ना चिर आवागमन मिटदा नहीं। मेरा सतगुरु गरीब नवाज पातशाह होर इशारे करनगे, आखो सतनाम श्री। मेरे साहब नूं जदों सिद्धा ने पुछया सतगुरु जी तुसी मैनूं कृपा करके दसना करो कि जे तुसी हरिद्वार गए हो ते पांडे तुहाडे चरणां उत्ते डिगे ने, ध्यान देना है, जिती नौ खंड पृथ्वी। बाबे ने कोई एक देश नहीं जितया, बाबे ने दो देश नहीं जिते। ए ते साडी बदकिस्मती है कि धन गुरु नानक पातशाह दे चरणां ते चलण वाले प्रचारक मुक गए। धन गुरु नानक वर्ग वर्गे दरवेश प्रचारक नहीं इस कौम विच रहे। जे हरिद्वार गए ऐसे ज्ञान दे तीर मारे हरिद्वार दे पांडे पैरां ते डिग पए, जे जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथपुरी वाले पैरां ते डिग पए, जे मक्के मदीने गए उथे मक्का मदीना गढ़ बगदाद नवाए के। बोलो गढ़ बगदाद आ नवाया ना, तुसी कहिंदे हो नवा दिता टेलीविजन दे उत्ते, रोज अखबारां च पढ़दे हो कि बगदाद नूं नवाता, मगर इहनूं नवाउण नूं किन्ना चिर लगा ते की वरत्या।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਕ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਏ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਵੀ। ਬੀਬੀਓ ਬੱਚਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਇਆ। ਆਖਰ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਵਾਰੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਨ ਪੱਟਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ।

0: पिता सम तरला पाओ, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, पिता
1: समझावेंगे, पिता समझावेंगे।
0: धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज समझा इन्हां अपने सिखां नूं, ये तेरी गोद विच आण के रोज बैंदे ही, इन्हां नूं तपदियां सड़दियां नूं होर कोई जगह नहीं, मैं होर थां नहीं जिस पे करूं बेनती, रोज कहिंदे ही आउंदे भी तेरी गोद विच, प्यो भी तेनूं मानदे ही, साहिब माता नूं, साहिब कौर नूं मां भी मानदे ही, मगर एक दूसरे दी लत्तां खिंचदे ही, एक दूसरे दे दुश्मन ही है तेरे सिख। हे मेरे सतगुरु इस पंथ उत्ते बौड़ी कर, हे मेरे गरीब नवाज पातशाह इस पंथ उत्ते तरस खा, रहमत कर, बौड़ी कर इस पंथ दी, इन्हां विच आपस विच प्रेम बख्श। कदी तू गुड़ती दे के कहा सी सच कहूं, सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो, सतगुरु ए उल्टे चले गई है, नफरत कर दे एक दूसरे ना। हे मेरे गरीब नवाज तुसी गुड़ती दिती सी जिन प्रेम कियो, ए नफरत कर दे, इन्हां नूं तरस कर, रहम कर, इन्हां दे पैरां तो लैके सिर तक पै कोड़ नूं अपनी नजरे अनायत नाल ठीक कर, तरस करो, तरस करो महाराज इस पंथ दे उत्ते, ए तेरी शरण विच आण के बाणी पढ़दे ने, ना को वैरी ना ही बगाना, ए झूठ मारदे ने तेरी शरण विच, इन्हां ने सारे ही वैरी बनाए ने, इन्हां ने सारिआं नूं बगाने समझिआ है। हे सतगुरु ए उत्तो उत्तो कहिंदे हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, इन्हां दे अंदरला कोट ठीक करो, ए जितना बाहरों सोहणे लगदे ने, गुरु गोबिंद सिंह साहब अंदरों भी सोहणे बनाओ इन्हां नूं, हे मेरे मालिक इन्हां दा इलाज करो, मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हे मेरे मालिक वैद बन के इन्हां दे अंदरले कोड़ नूं ठीक करो, पंथ नूं एक दूसरे नाल प्यार कराओ। ए ते सारे संसार नूं गल विच लकड़ी लैके इन्हां कहना सी अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। तुसी ते अमृत छका के भाई कन्हैया जी ने वर्गे प्यारियां नूं कहा सी तू पास हो गया है, तेनूं कोई बगाना नहीं दिसदा। हे सतगुरु असी एक संगत विच बह के एक थाल दा कड़ा प्रसाद छकन वाले, एक लंगर दे विच पंगत विच बह के लंगर छकन वाले, असी मन करके एक दूसरे तो बड़े दूर हो गई। सतगुरु तरस खा साडे दे उत्ते, मेरे सतगुरु कहण लगे मैं खिमा लै लिया ते मन परमेश्वर दे चरणा विच वेच दिता है। सिद्धो जिदन तो मैं खिमा लै लिया परमेश्वर कोलों, जिदन तो मैं नीवा पान लै लिया परमेश्वर कोलों, ते मन जड़ा खराब करदा सी ये वेच दिता है सतगुरु अगे, उदन तो खरा खरा आके सब कोई बोलो खरा खरा, फिर बोलो जी खरा खरा आके। एक दो शब्द हुंदे ने, एक खोटा ते एक खरा। जिहदे मन विच कोड़ होवे आपां कहिंदे मन दा औगणयारी, कंत ना भावे, मन की खोटी खोट कमावे, मन दा खोटा बंदा खोट कमाउंदा है, इत्थे गल्लां कुछ होर करदा है, उत्थे कुछ होर करदा है। ओ प्यारियो किथे तुर जाओगे, किथे जाओगे, केड़े साहब दे अगे, ओ साहब दे अगे जाओगे जेड़ा साहब सतगुर अंदरों निरवैर है। सतगुर उस गुरु दे सामने पेश होना जाके जेड़ा अंदरों निरवैर आ, उस गुरु दे सामने एक दिन जाके पेश होना है। सतगुरु सबना दा भला मनाएदा, बोलो सतगुरु उस गुरु दी शरण विच जाना है, उस गुरु दे सामने जाना है। केड़ा मुंह लेके जाओगे, केड़ा कोड़ जाके विखाओगे मालक नूं, अपने अंदर नूं शुद्ध करो, तरला पाओ एक बार, नक रगड़ो आण के गुरु दे अगे, हे मेरे सतगुरु मेरे अंदर दी बीमारी ठीक करो। मेरे साहब कहिंदे जिदन तो मैं मन गुरु नूं दे के खिमा उहदे कोलों लै लिया, उदन तो खरा खरा आके सब कोई। जे मक्के गया वा ते अंदरों बाहरों एक सां, ओ अखां वालियां नूं नजर आ गया, उन्हां कहा खरा आ गया, खरा आ गया, वह पैरी पै गए। जिन्हां नूं खरा ज्ञान सुनाया, मक्के मदीने वालियां नूं सुनाया, मक्के मदीने वाले काजी पैरां ते डिग पए, गढ़ बगदाद वालियां नूं सुनाया, गढ़ बगदाद नीवा हो गया, मुल्तान विच गया, मुल्तान वाले पैरी पै गए, क्योंकि मन दे दिता सी ते खिमा गुरु कोलों लैके खरा हो गया सा खरा। नानक पारख आप, बोलो नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। मेरे सतगुरु दे चरणा च बेनती करो। मेरे साहब कहिंदे ने सिद्धो ए सारी करामात अमृत दी बनी, ए अमृत करके मेरा मन इन्ना शुद्ध हो गया है। खरा खरा आखे सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए, खात पियंत मुए नहीं जानिया, खांदिया पींदिया जिन्हां चिर मुंह दे स्वाद लाए सी उन्हां चिर ते मरन दा ही ना पता लगा, उन्हां चिर ते मरन दी जाच ही ना आई, ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਬੋਲੋ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ, ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਆ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ। ਇਤਨਾ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਤੋ

बारक मुख मांगे सो देना, बारक मुख मांगे सो। ए बन गया मेरा पुत, ते आज तो हुण जो मेरा पुत मुंह चो मंगे इनू देना है। ओ आर्डर करके मुड़िया, उन्हें कह दिता, गया कोल गल नाल फिर मत्था चुमया, गल नाल लाया ते आख्या, मैं कह दिता है दाता देने वाले नू, सचेत होके बैठो, मैं कह दिता है। आके गए ना कि बारक मुख मांगे सो देना, उन्हें आख्या पिता कृपाल आ गया है की नहीं, बारक मुख मांगे सो देना। उन्हें ते ए गल कह के मुड़िया, ते पिछे बालक ने आख्या मेरी ते हुण भोखी कोई नहीं रह गई, मैं मंगा की। नानक बारक दर्स प्रभ चाहे, हुण मुक गए ट्रैक्टर मंगने, मुक गईयां गड्डियां मंगणियां, मुक गईयां दुनिया दीयां दौलतां, हुण ते नानक बारक दर्स प्रभ चाहे। बोलो नानक बारक, हुण ते इहनूं पता लग गया असली दात की आ। देख जीवां गुर तेरा दर्शन दे।

दासन दास कह जन नानक जेखा तू कराखे तेखा हौ करी वखियान बेशुमार अथाह अगंत अतुल ज्यों बुलावहु

सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगादि सच खैती सच नानक खुशी भी सच

इनते आप छड़ावो, एहे पीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलावो, अपनी बेद आप जनावो, हर जन मंगल गावो, बिसर नाही कब ही आते, एहे बिद मन में पावो, गुरपुरा पीत्यो वड भागी, जन नानक कतह ना जावो, ना खो जति सति नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, परणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरया, परणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरया। परम सम्मान योग चवर शतर तख दे मालिक, जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, अमृत बचना दा सोदर रह राज साहब जी दा पाठ और उस तो उपरंत हजूर दे अमृत बचन कीर्तन रूप अंदर आप जी ने श्रवण कीते ने। आओ अपने ख्यालां नूं संकोच दे होए अंतर्मुख हो। कल दी जो आपां एक विचार दी लड़ी आरंभ कीती है, ओदे वल थोड़ा जिहा आपां पंछी झात जरूर पा लईए। कल आप जी दे चरणां विच बेनती कीती सी कि आखिर इस शरीर नूं धारण करन दा कोई मकसद है, ते संपूर्णता कीती सी कि आपां केवल इंद्रियां दे रस विच मस्त हो के शरीर दी बाजमुखी क्रिया तक सीमित हाँ, पर हकीकत विच ये पता है कि नहीं कि एक दिन इस शरीर नूं इस चोले नूं त्याग के जीव आत्मा ने जाना है, ते फिर इस जिंद दा सहारा कौन बनेगा, इस जिंद दा आसरा कौन होवेगा। ते संपूर्णता विच आप जी दे चरणां दे विच बेनती कीती सी कि केवल एक सतगुरु है जिस दा शब्द साडी जिंद दे नाल जांदा है, बाकी शरीर नाल तुरन वालियां दा काफला बहुत जिउंदियां भी मिलदा है, मरण तो बाद भी लोक नाल चलदे ने। पर एक बेनती आरंभ विच करदे आं, कई वारी इस भरम विच आपां रह जांदे आं कि कोई आदमी चलाना करदा है ते उस दी अर्थी नाल लोकां दी गिनती बहुत हुंदी, कई वारी ओहदे भोग ते लोकां दी गिनती हजारां लखां दी तादाद विच हो जाएगी, ते आपां सहज सुभाए कह दिंदे आं कि जिस बंदे दे भोग ते जिस बंदे दी अर्थी नाल लखां बंदे चले होण, आखिर रब दी दरगाह विच प्रवान हो ही गया होना है, क्योंकि ये इकट्ठ दसदा पे कि इस बंदे दी किन्नी कु बनी सी। सतगुरु गुरु नानक साहब ने बड़ा स्पष्ट बचन कहे, कहन लगे इस भरम नूं अपने मन विच ना पाली,
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਨਾਉਂ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਉਂ ਰਖਾਇਕ ਹੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ।

0: गुरुदेव ने पहली गल ये कही, कह लगे सजना अपने आचरण नू तू उच्चा कर, जे अंदरों अमृत का स्वाद चखनी ते गुरु की कृपा लैके। एक सुनहरे की उदाहरण दे दी, कह लगी वह सोने नू ढालद ओदे कुल केड़ियां केड़ियां चीजां ने कदी ध्यान नाल तके। साहब कह लगे जत पहारा, पहारा का अर्थ सिख विद्वाना ने किया वह दुकान जिथे बैठ के सोना ढालिया जाना। जे अंदर ते अमृत नू लैणे ते पहला अपने आचरण नू उच्चा बना। जत पहारा धीरज सुनियार, कमाई करनिया अंदर टिका रखी, तेरे अंदर धीरज होवे जीवन नू कमाने ते गुरु ते बचना ते धीरज नाल सबर नाल टेक के बैठा रही। कदी तक सोने घड़न वाले वल वह निक्की निक्की सूक्ष्म जी कला नाल जदों गहने घड़द ते किन्ना किन्ना समा वह धीरज नाल टिकया रहिंदा। कह लगे अपने अंदर धीरज नू तू सुनार बना। जत पहारा धीरज सुनियार, ते जिथे सोना घड़िया जांदा वह कोल ऐरन पिया, ऐरन मत अपनी मत नू ऐरन बना। वेद हथियार गुरु ते बख्शे ज्ञान नू हथौड़ा बना, तेरे कुल शब्द गुरु दा ज्ञान होवे ए हथौड़ा होवे। जत पहारा धीरज सुनियार, ऐरन मत वेद हथियार, पाओ खला वाहगुरु जी दे अदब नू। सजना तू ओ धोखनी बना जिदे नाल ओ अग नू फूक मारदा पिया, पाओ खला अगन तपताओ, गुरु दी बख्शिश नाल तू सेवा कर। ए तू वड्डा कोई तप नहीं, ए तेरे वास्ते मानू अग बन जाएगी। पाओ खला अगन तपताओ ते जिथे अमृत ढालना। कहन लगे भांडा पाओ प्रेम नू भांडा बना, भांडा पाओ अमृत तित ढाल, पर किवें घड़िया जाएगा सजना, घड़िया शब्द सची टकसाल। अंदर का जे अमृत लैने दूजा प्रमाण साहब ने दिता गुरु ग्रंथ साहब विच गुरु नानक साहब जी ने। कह लगे देख तू पुछना के बाहर ते अमृत दी की जरूरत है। धन गुरु नानक साहब कह लगे दुध दे अंदर मक्खन मौजूद है, दुध दे अंदर घ्यो भरपूर है, ते जे किसे आम बंदे नू कह दिए सजना आ दुध देख की एदे विच मक्खन है कि इस दुध दे अंदर घ्यो है, ते आम तौर ते देखन नू कहेगा नहीं प्यारिया केवल दुध प्रतीत हुंदा है, अद अंदर मक्खन घ्यो जा तत नहीं। ते सियाणे कहणगे इस दुध दे अंदर घ्यो मक्खन मौजूद है, पर इहनू प्रगट करन लई भी जुगती चाहीदी है। पुछिए फिर केड़ी जुगती? कहन लगे अंदर दुध दे घ्यो है, प्रगट होना पहली गल भांडा साफ होवे धोता होवे, टेक के एदे विच तू दुध नू पाई गर्म करके जाग लाई, जाग लाण तो बाद तू मधाणी नाल दुध रिड़की, ते चेते रखी रिड़कण तो बाद जेड़े दुध नू जाग लगी ओदे विचों घ्यो निकलदा है। इसे तरह तेरे अंदर ओदी किरपा है, जदो गुरु तो खंडे बाटे दी दात लै लैगा ना परत के फिर तू करी बख्शे हुए नाम दा अभ्यास, ते मेरा सतगुरु तेरे अंदरों नाम जल दा प्रवाह चला देगा। साहब ने बाणी विच बचन कीता, कहन लगे भांडा धोए बैस धूप देवो। गल फिर अमृत दी कीती, जे गुरु नानक साहब जपजी साहब विच कह रहे ने कि भांडा पाओ अमृत तित ढाल, इत्थे कहन लगे भांडा धोए बैस धूप देवो। बैस दर थे टिका विच धीरज विच आई, भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूध है को जावो, दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो। कहन लगे जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। सतगुरु फिर अंदर का अमृत किवें चले? ते साहब ने नाल कह दिता, कहन लगे ए मन ईटी हाथ करो, जिवें बीबी दुध रिड़क दीए ते लक्कर दियां इटियां नू घुट के पकड़ के रख दीए। जदों सतगुरु तो खंडे बाटे दे अमृत दी दात लई नाम नाल जुड़िया है, उदों मन नू इन्ना कु टिका के नाम जपी जिवें दुध रिड़कन लग्या अपने हाथ विचों लक्कर दियां गिटियां नू छड़ दे। कहन लगे ए मन ईटी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे। एक नेत्र है जिदे नाल ओ इटियां बनियां ने, तेनू अंदर माया ते मोह दी नींदर ना आवे, सुचेत हो जाई। ए मन ईटी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे, रसना नाम जपो तब मथिए। जदो तू गुरु बख्शिया नाम जपेगा फिर की मिलेगा इन बिद अमृत पाव। इस तरीके नाल तेनू अंदरों अमृत दी दात मिलेगी। साहब ने तीजा प्रमाण दिता, जोगी नू संबोधन करदिया भी यही गल कही, कहन लगे जे अंदर दा अमृत लैणे फिर गुड़कर ज्ञान। ध्यान करता वै कर करनी कस पाई है पाठी भवन प्रेम का पोचा इत रस अमेव चवाई है तेरे अंदरों ओ नाम रस चलेगा पहला जदो गुरु के सिखा ने चरण पौ रही कमाइया कीतिया अंदरों गुरु ने नाम दी झड़ी ला दिती ओ नेत्र भी अमृत विच भिज गए ओ रसना भी अमृत विच भिज गई ओ हिरदा भी अमृत विच भिज गया उसे सतगुरु ने जिमें गुरमुख प्यारे कह रहे सन गुरु कलगी वाले ने खंडे बाटे का अमृत सानू दिता हुण पंज सिंह साहबान पंज प्यारे अमृत जदो तैयार करते ने पंजां दे अंदर गुरु वरद है पानी ओही है जिहड़ा आपां घर विच वरतने आ उसे जल नू गुरु की हजूरी विच लै के आए जिमें गुरमुखां दसिया जल पवित्रता का शीतलता का निम्रता का प्रतीक है जेड़े पतासे ने मिठास के प्रतीक ने खंडा जेड़ा मीरी ते पीरी का प्रतीक है कह लगे एक पासे गुरुदेव ने पंजां नू इन्नी कु समर्था दे दिती जदो तुसी बाणी नाल जुड़े हो तुहाडे अंदर गुरु की कृपा वरसदी है ते तुसी खंडे बाटे का अमृत जदो तैयार करोगे तुहाडे नेत्र उस जल दे विच रहन जदो पंज अमृत तैयार करदे ने उहनां दे नेत्र बाटे दे जलते ने एकाग्र हो के बाणी पढ़दे ने मुख विचों भी गुरु वरदा है नेत्र जदों टिकांदे ने अमृत जल ते उदों भी गुरु वरदा है ते जदों ओ अमृत दी दात प्राणियां नूं देंदे ने ते उहनां पंजां विचों गुरु वरत के उहनां प्राणियां दे अंदर भी अमृत दी झड़ी ला दिंदे पंजां अंदर सतगुरु वरदा है मेरे गुरदेव ने अमृत दी दात दित्ती आपां सुणिआ कि शब्द दे दित्ता खालसा मैं अर्ज करां मेरे सतगुरु ने जदों अमृत दी दात दित्ती गुरमुख कह रहे सन के सुखी बसै मोरो परिवारा सिख विद्वाना ने कोशिश कीती अपने अपने ढंग नाल कलगी वारे दी उपमा कीती जदो चमकौर दी गड़ी नूं तकीए इधर सतगुरु अमृत दा दाता अपने पुत्र कुर्बान करदा है ते जिन्ना ने अमृत पान कीता है उस पंथ लई की मंगदा पिया है ते उधर जिन्ने अमृत दी दात लई जितन ओहदा पुत्र कुर्बान हुंदा है गुरु नूं शरदा दे फुल की हो जाए भेट करदा मैं दो प्रमाण देने ने बड़ा गुरमुख प्यारा ढाडी विद्वान होया सोहन सिंह जी शीतल उन्हां तो सिख कौम का बच्चा बच्चा जाणू वो कहिंदा चमकौर की गढ़ी विच जदों मेरे सतगुरु दे छोटा साहबजादा बाबा जुझार सिंह भी शहीद हो गया फिर उस ढाडी दे अंदर की उडारी है उन्हें अपनी कलम दे नाल कुछ काम पंक्तियां कहियां ते जो कुछ उन्हें गुरु कलगी वाले दे मुख तो इस खालसा पंथ लई कढ़ा दिता वह शब्द जद सुने हर एक दा हिरदा बैराग दे नाल पिज जांदा आम तौर ते एक पंक्ति असी वरतने आ कहिंदे ने सामने मेरे सतगुरु नूं दिसदा है कि पुत्र जुझार सिंह शहीद हो गया ते चमकौर दी गड़ी विच बैठा मेरा दशमेश बापू बड़े प्रेम नाल भिज के कहिंदे ने हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा अखां सामे हो गया वह बेरा बेरा उन्हां शब्द टुकड़ा टुकड़ा वरते है खैर यह ढाडी दे कवि दे अंदर दी भी उडारी है हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा अखां सामे हो गया वह बेरा बेरा कहन लगे उंगली ला के लै गया उन्हूं वीर वडेरा ते सतगुरु महाराज कहन लगे जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा हथ बन बोले सतगुरु वाह भाणा तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा हुक्म रजाई चलना जो करे चंगेरा ते एक शब्द वरत्या उस दिन चमकौर दी गड़ी विच पंथ वसे मैं उजड़ा मन चौक रिहा इत्थे उन्हां ने पंक्ति वरती जदों कह दिता कि पंथ वसे मैं उजड़ा मन चौक नेरा जदों इधर तकने आ गुरु गोबिंद सिंह अमृत दा दाता है उहदे पुत्र शहीद हुंदे ने ते कहिंदे ने पंथ वसदा रहे मैनू उजाड़ा परवाने ते जदों लाहौर की धरती नूं तकने आ जिन्हां नूं सतगुरु तू अमृत की दात दे गया ते जितन उन्हां ते समा बनिया उन्हां अमृत पीण वाले गुरसिखां ने शरदा दे फुल पेट कीते शबेक सिंह दे सामने उहदा इकलौता इकलौता पुत्र शाबाश सिंह टिकिया जालम ने प्यो ते पुत्र नूं गिरफ्तार कीता है रतन सिंह भंगू लिखदा है उस वक्त आया काजी हाकम आया उन्हें एक गल की शबेक सिंह कुछ होश वाल झाती मार कुछ होश नू हाथ मार देख सजना लोग पुत्रां नू तरस देने दर दर ते जांदे ने पुत्रां दी दात मंगण लई तैनू निरंकार ने उस खुदा ने जे एक पुत्र दिता इनू बचा लै ते पुत्र बच सकदे ही। जे तू इस्लाम नू कबूल करे सतगुरु ते पुत्र जांदे ने। कहिंदे ने पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। ते जदों शबेक सिंह दे सामने समा आउंदा अपने पुत्र नू बचा लै ते अगो ओ बड़े शब्द प्यार दे कहिंदा आखदा ओ काजी तैनू केवल अखां नाल ए संसार दिसदा पे है। तू ऐस दिस दे दृष्टमान संसार तक सीमत है पर कहिंदा मैनू एदे पिछे कुछ होर भी नजर आउंदा पे। पुछया तैनू की होर दिसदा ते अगो उहने शब्द बड़े प्यारे कहे कहन लगा तैनू पता नहीं तू कहना एक पुत्र नू बचा लै ते जदों मैं एक पुत्र नू बचा के रब दे घर नू गया ते रतन सिंह भंगू लिखदे ने अगो आवाज आएगी शबेक सिंह मैं चार कुर्बान करके क्या सी के पंथ वसे तू एक दी खातर थिड़ गयो। देखो उन्हें की हो जाए शरदा दे फुल पेट कीते। रतन सिंह भंगू लिखदा है कहन लगे सिखन काज गुरु हमारे शीश दियो नी सन परवारे चारे पुत्र जान कुहाए सो चंडी की भेट कराए। कहन लगे हम कारण गुर कुल गवाई हम कुल राख है कमल विड़ाई। साडी खातर साहब ने इना कुछ कुर्बान कर दिता ते मैं अपने आप नू बचा के लै जा। प्यारियो उस कलगी वाले ने जड़ी अमृत की दात दिती ए केवल कर्म कांड नहीं पंजा विच सत गुरु वरतदा है। बाणी रूप जदो ओ गुरु की बाणी भिज के पढ़दे ने ओही जल अमृत बन जांदा है। जदो ओ जल सिख दे हिरदे भी जांदा है अंदर नू भी धो देंदा है। जे नाल कमाई करिए पै वैसे रहत नामे विच इक शब्द उहना कहा कहन लगे प्रथम रहत जे जान खंडे की पौल छके। उहना ने प्रथम रहत शब्द वरत्या इहदा मतलब हर सिख लई लाजमी है जिन्हें जीवन कमाना है ओहदे लई प्रथम रहत शब्द वरत्या। रहत नामे वाले गुरसिखां ने कहन लगे उहना पंजां तों जदों अमृत लएगा अंदर भी गुरु किरपा करेगा नेत्रां नू भी गुरु किरपा करके स्वच्छता बख्शेगा तेरे शीश भी जदों निपया अमृत ते जेड़े बचन तू पढ़ना गगन दमामा बाजियो परयो निशाना कहो उथे गुरु की रहमत वरतेगी। साहब ने किरपा करके अमृत आप पान कीता गुरसिखां नू अमृत की दात दिती। मैं एक बेनती करके समाप्ति करना। प्रोफेसर पूरन सिंह ने एक शब्द बड़ा प्यारा वरते असी अपने अपने ढंग नाल खालसे की परिभाषा संगत सामने रखने। कहिंदे ने जदों मेरे गुरदेव एकाग्रता बख्शना दमदमा साहब की धरती ते पहुंचे ने ना ते भाई डल्ले ने रज के सेवा की भावा सूबा सरहंद ने अपने वालों किन्ना डरावा भी दिता है पर कहिंदे ने तां भी वह गुरु कलगी वाले के चरणा का भवरा बनिया रहा है। एक दिन बैठिया अचनचेत एकाग्रता बख्शिया दे थोड़ी जी एक दिन बैठिया अचनचेत भाई डल्ले का जदों ये पता लगा कि सूबे सरहंद की धमकी की भी इन्हें परवाह नहीं की ते हजूर ने हस के कहा डलिया जो कुछ तू मंगेगा मैं तेरी झोली विच पा देंगा कुछ मंग तो सही। ते डल्ले ने एक बेनती की दातिया जे त्रुठ है ते कृपा कर अपने चरणा विच पीड़ी जिनी थां दे दे। साहब उस वक्त सोची पै गए ते अगो उत्तर बड़े कमाल दा दिता कहन लगे डल्या थां लैना चाहना गुरु दे चरणा विच सेवा कीती केवल दुनिया तक सीमित रह के दुनिया की सेवा करके तू दीन प्या मंगना है। जे गुरु दे चरणा विच दात लैनी आ ते चेते रखी अमृत की दात लैके तेनू खालसा बनना पेगा। वाहगुरु जी का खालसा बन। उन्हें पूछा महाराज खालसे की परिभाषा। साहब ने बड़े प्यारे बचन कहे कहन लगे डल्या खालसा एदा मतलब ए नहीं कि जिवें आ तेरे किले ने इसे तरह वाहगुरु का खालसा आप शब्द परतने ना वाहगुरु जी का खालसा। कहन लगे जिवें तेरे किले ने इस तरह वाहगुरु का खालसा नहीं जिवें तेरे हाथी घोड़े तेरी जमीन भुए पांडा इस तरह मेरा वाहगुरु का खालसा नहीं। कहन लगा फिर होर कि खालसा। तो साहब ने बड़े प्यारे बचन कह कहन लगे सजना अज किले तेरे ने तू चला गया किले फिर भी कायम रहने ने। चेते रखी अज भुए पांडा जमीन तेरा है कल नू चला गया जमीन फिर भी रहेगी। वाहगुरु जी का खालसा इस तरह नहीं। कहन लगे वाहगुरु जी का खालसा इस तरह है जिवें सूरज ते सूरज दियां किरणां कहन जे सूरज है किरणां ने जे सूरज नहीं ते किरण दी होंद की। देखो कैसा संबंध है ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਸਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੱਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੱਤਾ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਲਿਆ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਭਾਲਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਸੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਨ ਘਟੈ, ਜਿਨ ਦਰ ਤੇ ਮਤਾ ਘੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਟੈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਕੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਤੇ
1: ਖਰੀਦਾ ਜਾਨ ਲੱਭ ਤਾਂ ਕਿਆ, ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇ ਹੋ, ਕਿਚਰ ਛੱਤ ਲੰਘਾਈਐ ਛੱਪਰ ਟੁੱਟੈ ਮੇ ਹੋ। ਹਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਪਵੈ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਓਂ, ਅੱਜ ਫਰੀਦੈ ਕੁਜੜਾ ਸੈਕੂ ਹਾਥੀਓ। ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਓਂ, ਅੱਜ ਫਰੀਦੈ ਕੁਜੜਾ ਸੈਕੂ ਹਾਥੀਓਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਫਰੀਦਾ ਜਾਨ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਿਹੋ ਕਿਆ, ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨਿਹ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਗਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਧੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੇਵਲ ਗਰਜ ਕਰਕੇ। और जिस दिन गरज पूरी होनी बंद होएगी उस दिन तेरा प्रेम ही टूट जाएगा। मेरा ते परमात्मा दा संबंध बनिया है पर विचकार एक गरज खड़ी है। सानू दोवां नू जोड़न वाली विचकार एक गरज है। जीव परमात्मा दे नाल बज्जा है पर गरज दे तागे दे नाल, गरज दी तंद दे नाल। जिस दिन परमात्मा गरज पूरी नहीं करेगा, गरज पूरी हुंदिया देर लगेगी, उस दिन तेरा प्रेम चला जाएगा। इहदा मतलब तैनू अजे परमात्मा दी हकीकत असलीयत दे संबंध विच जानकारी नहीं मिले। हां इतनी जानकारी मिली है, परमात्मा दे के नवाजदा है, परमात्मा दा सुभा देना है। तू गरजाऊ बन के उहदे नाल जुड़िया और केवल दुनियावी दातां दा गरजाऊ बन गए, क्योंकि उहदा सुभा ही देना है। ये समझ मिल जाए कि मेरा जीवन मनोरथ परमात्मा दे नाल जुड़ना है, गरज विचों निकल जाएगी। कहन लगे जान लभ धन्य हो गया। अगर गरज है, लोभ है, लालच है, तो फिर इनू प्यार कहन दी लोड़ भी की है। ये तो इस तरह ही समझ लो कि आप हथ दे अंदर हरे रंग दा चारा लेके अगे अगे चलते जाओ ते गऊ तुहाडे मगर मगर तुरी आएगी। हथ विच चारा नजर नहीं आएगा ते गऊ तुहाडे मगर चलना बंद कर देगी। इस तरह ही समझ लो कि हथ दे अंदर रोटी दा टुकड़ा लेके चल रहे हो, कुत्ता तुहाडे मगर मगर तुरिया रहेगा। तुहाडे हथ दे अंदर रोटी दा टुकड़ा नहीं है ते कुत्ता भी तुहाडे मगर नहीं है। किसी दूसरे दे हथ दे अंदर रोटी दा टुकड़ नजर आया है तो कुत्ता दूसरे दे मगर चल पेगा। मगर मगर चल रहे हैं परमात्मा दे, पर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सानू गरज दा चारा, गरज दा टुकड़ा परमात्मा दे हाथ विच नजर आ रहा है, परमात्मा दे रहा है। फिर ये सोच कोई बहुत चंगी बहुत वधिया सोच नहीं है, ये बहुत उची ते महान सोच नहीं है। ये व्यापारी वाली सोच है, व्यापारी वाली सोच। व्यापारी दा सुभाव हुंदा है सौदा एक दुकान तो नहीं मिलिया, चलो दूसरी दुकान ते जाके खोज बीन करने हैं, शायद उथों मिल जाए। दूसरी दुकान तो सौदा नहीं मिलिया ते चलो तीसरी दुकान तो जाके वेखने हैं, सौदा उथों मिल जाए। जिथों व्यापारी नूं सौदा मिलना बंद हो जाए, व्यापारी उस दुकान दे उत्ते जाना बंद कर देंदा है। की लैन जाना है जद कुछ मिल ही नहीं रहा। मेरी मतलब दा समान जद इस स्टोर तो मिलदा ही नहीं है, दुकान तो मिलदा ही नहीं है, तो फिर मैं इस जगह दे उत्ते जावां भी क्यों? खिमा चाहवांगा बहुत सारिया लोगों नूं मैं इस तरह दा जीवन गुजारदिया वेख्या है। मंदिर विच नतमस्तक हुंदे ने, गरज पूरी नहीं हुई, मस्जिद विच चले जांदे ने। मस्जिद विच जाके चार दिन नमाज अदा करदे ने, गरज पूरी नहीं हुई, गुरुद्वारे आ जांदे ने। गुरुद्वारे आण के चार दिन बह के सुनदे सुनाउंदे ने, समा लग गया है, अजे कर्मां दी पिक्चर नूं परमात्मा ने वेख्या है। ये दात तेरी चोली विच पैनी नहीं है, पैनी है ते देर दे नाल पैनी है। इत्थे आउंदिया चार दिन बीत गए ने, गरज पूरी नहीं हुई, तो होर थां थां दे उत्ते पटकना शुरू कर देंदा है। मैं इत्थे जाके वेखा, मैं उत्थे जाके वेखा, मैं उत्थे जाके वेखा, शायद किधरों गरज पूरी हो जाए। जिथों गरज पूरी हो जाए उही इहदा परमात्मा है, उही इहदा गुरु है। हकीकत विच जो गुरु ने उहदी समझ नहीं है, हकीकत विच जो परमात्मा है उहदी समझ नहीं है। फिर बेनती नूं दोहरा दिया, इत्थे इस तरह दे साडा जुड़ना है कि जिवें गऊ साडे हथ विच हरे रंग दा चारा वेख के साडे मगर आ रही है, कुत्ता हथ विच रोटी वेख के मगर मगर चलदा है, असीं गुरु कोलों दातां वेख के मगर मगर चल रहे हैं। गुरु धन दे रहा है, गुरु परिवार दे रहा है, गुरु तंदुरुस्ती दे रहा है, मगर मगर चल रहे हैं। जिस दिन गुरु कहन कि अजे समा नहीं आया, तेनू दात मिलेगी मिलेगी थोड़ी चरोकनी देर बाद, असीं गुरु दा दर छड देंगे। और मैं एक होर भी बेनती करदा चलां, मन लो कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी इस तरह कह दें कि सजनों एक महीने वास्ते तुहानू कोई दात मिलेगी ने। कहिंदे नहीं है गुरु दा दर 24 घंटे खुला है, छिन छिन खुला है। मैं केवल उदाहरण बना के तुहाडे सामने अर्ज कर रहा। मन लो कि सतगुरु कह देन कि एक महीने वास्ते तुसी आउंदे रहो, सुनदे रहो, सेवा करदे रहो, पर दात नहीं मिलेगी। दात मिलेगी एक महीने दे बाद। मैनू एवें लगदा है चंद को मनुख ही रह जाणगे जो आउण वाले रहणगे, बाकी नहीं आउणगे। जद दात नहीं मिलनी, महीने बाद मिलनी है, ते फिर तेरा दरवाजा भी महीने बाद ही खड़कावांगे, तेनू नमस्कार भी महीने बाद ही करांगे। अज क्यों करिए, अज ते तू देना कुछ नहीं, तेरा ही ऐलान है अज मैं देना कुछ नहीं। तू अज देना नहीं ते अज फिर नमस्कार क्यों, अज देना नहीं ते अज तेरे दर ते आईए क्यों। जिस दिन देना शुरू करेगा साडा आउना शुरू होएगा, तो देना बंद कर देगा साडा आउना बंद हो जाएगा। परमात्मा दे नाल प्यार जो साडा बनिया है वो कोई बहुत उच्च क्वालिटी का प्रेम नहीं है। प्रेम दे अंदर शर्त नहीं आती। बड़े ध्यान नाल समझ लेना, प्रेम दे अंदर शर्त नहीं आती, और जो शर्तां दे आधार दे उत्ते चलदा है वो प्रेम नहीं होंदा। अगर पति ते पत्नी शर्तां दे आधार ते चल रहे ने, रोटी तू पकानी है, भांडे मैं साफ करने ने, इस तरह मैं करना है, उस तरह तू करना है, ये प्रेम नहीं है। ये ते एग्रीमेंटेड लाइफ है, एक दूसरे दे नाल इकरारनामा कर लिया है, तू इस तरह करना है, मैं इस तरह करना है। इकरारनामा टुटिया तो परिवार टुट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, ये कोई प्रेम नहीं है। प्रेम दे अंदर एक दूसरे तो कुर्बान होना होता है, प्रेम दे अंदर अपना आपा लुटाउना होता है, प्रेम दे अंदर शर्त नहीं होती। अक्सर पंजाबी दे बुजुर्ग वार पुराने बुजुर्ग कह देंदे ने प्रेम दे अगे नेम नहीं होंदे। अगर कोई नेम है, कोई शर्त है, तो खिमा चाहवांगा फिर प्रेम नहीं है, केवल तेरा इकरारनामा है, तेरा एग्रीमेंट है। एक मैं होर भी बेनती आप संगत दे सन्मुख करदा चला, दुनिया दा सारा ही संबंध खड़ा है लैण दे उत्ते ते देण दे उत्ते। सारी दुनिया दा संबंध इस तरह ही खड़ा है। सब तो पहला अपने शरीर वल वेखिए, असी साह बाहर कढ रहे हां तां ही दूसरा साह अंदर जा रहा है। अगर बाहर कढना बंद कर दईए अंदर जाना बंद हो जाएगा, अगर अंदर लजाना बंद कर दईए तो जीवन की लीला खत्म हो जाएगी।
2: श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। श्लोक शेख फरीद के। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जित दिहाड़ है धनवरी, साहे लय लिखाए। मलक जे कन्नी सुनींदा, मोहं दिखाले आए। जिंद निमानी कड़ी है, हड्डा कूकड़काए। शाहे लिखे ना चलनी, जिंदू को समझाए। जिंद बहुटी मरण वर, ले जासी परनाए। अपना हथी जूल कै, कै गल लगे ताए। वालों हों निकी पुरसलात, कन्नी ना सुनी आए। फरीदा कीड़ी पवन दई, खड़ा ना आप मुहाए।

साहब जी दे विच्चों मूल रूप विच दो टॉपिक लभिए कि केड़े ने, ते फिर यह बचदा एक हर पंक्ति दे अंदर हर शब्द दे अंदर गुरु बाणी ने सानू परमात्मा नू चेते करन वास्ते हुक्म लाया है, फरमाया है परमात्मा नू अपने चेते दे अंदर लियाउण दा यतन कर, वसाउण दा यतन कर, परमात्मा दे नाल जुड़, परमात्मा दी बंदगी कर, उहदे गुणा नू अपना। शब्द शब्द दे अंदर, पंक्ति पंक्ति दे अंदर सानू ये उपदेश मिलदा है। दूसरा, बहुती बाणी दे अंदर सानू साडा अंतला पल चेते कराया गया, साडा मौत वाला पल चेते कराया गया। मैं भगत फरीद साहब जी दे सलोकां नू प्रारंभ कीता है, प्रारंभ दे अंदर ही भगत फरीद साहब मौत चेते करवा रहे। जिस नू मौत चेते विच आ जाए कि मैनू मरना पैना है, वो बंदा गुनाहां तों बाज आ जांदा है, बंदा गुरु की शरण में आ जाता है। सतगुरु, जब मैं मरना ही है, मैनू जाना ही पैना है, तो फिर मैं अपने जीवन नू विगाड़ा क्यों, अपने सिर दे उते पाप अपराध की पंड बन के रखा क्यों, जब मरना ही है। तो फिर यह भी नहीं पता कि मौत का डंका वज कदों जाना है। यह तो जरूरी नहीं कि 90 साल बाद ही मौत ने आना है, या 100 साल बाद मौत वाली घटना घटेगी। पता नहीं मौत का डंका कदों वज जाना। हजूर दा फरमान ते इस तरह भी है कि हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार। उदी मर्जी बालपन विच लेके चला जाए, उदी मर्जी है वो जवानी दे दौर विच मौत नू भेज देवे, उदी मर्जी है वो बुढ़ापे तो बाद ले जावे। मर्जी ते परमात्मा दी, अपने ते वस विच नहीं। और ना ही अजे तक कोई मौत नू रोक पाया, ते ना ही मौत नू कोई रोक पाएगा। खैर, जो मैं बेनती कर रहा सा कि मौत दे संबंध विच गुरु बाणी दे अंदर वार वार जिक्र आया, जिसनू मौत ध्यान विच आ जाए, मौत चेते विच आ जाए, वो पापा अपराधा तो बच के गुरु दी शरण विच आ जांदा है अपने जीवन दे सुधार हित। ते जे पहला गुरु चेते विच आ जान, मौत बाद विच चेते आवे, ते फिर गुरु चुके इनू मौत चेते करवा देंदे ने कि तेनू मरना पैना है। ते जे मरना पैना है ते फिर पाप अपराध क्यों कर रहे हैं, जे मरना ही पैना है ते फिर दोष क्यों कमा रहे हैं। मौत चेते विच नहीं, गुरु चेते विच नहीं, ते मनुख नचिजक होके पाप भी कमाई जांदा है, अपराध भी कमाई जांदा है, दिन पर रात कमाई जांदा है। केड़ा मरना, जाना सी गवांडी ने वो चला गया, मेरी ते पक्की एटे थी, मेरा ते पक्का टिकाणा यही। तो खैर, भगत जी कह रहे ने, मलक जे कन्नी सुनींदा, कन्ना दे नाल सुन रहे सां अज फलाने दे घर मौत आई, कन्ना दे नाल सुन रहे सां और लंबे समय तो सुन रहे सां, पर समझ उदों आई मूह दिखाले आए जद मौत राणी ने मूह दे उत्तों कुंड चुक के दरवाजा खोल के आण दीदार दिते। ते मैं एक बेनती होर करदा चला, सूझवान तजर्बेकार सज्जन इस तरह कहिंदे ने, कहिंदे ने कि बंदे दी जिंदगी दे अंदर एक वार अख जरूर खुलदी है। अख खुलन तो मतलब इनू एक वार जिंदगी दे मोड़ दे उते, किसे ना किसे मोड़ दे उते होश जरूर आउंदी है, इनू समझ जरूर आउंदी है। किसे किसे विरले नेमी प्रेमी नू समझ आ जांदी है कथा करके जां कथा सुन के, कीर्तन करके कीर्तन सुन के, बाणी पढ़ के बाणी सुन के, संगत करके, किसे नू ते समझ गुरुद्वारे आउण तो बाद ए आ जांदी है, कथा विचार सुनन तो बाद ए समझ आ जांदी है कि मौत ने आउणा है, ते मैं अपने जीवन नू सुर ताल दे अंदर तरतीब दे अंदर कर लवां, ते मौत आउण तो पहला पहला कर लवां, मौत ने आउणा आउणा। जो ना कथा कीर्तन सुन के जागे, ना बाणी पढ़ सुन के जागे, उदे वास्ते कोई उपदेश कारगर सिद्ध ना होवे, कोई कथा कीर्तन कारगर सिद्ध ना होवे, उदी फिर अख उदों खुलदी है जदों मौत दरवाजा खोल के उदे अंदर आण के उहनूं दीदार देंदी, उदों दी अख खुलदी। पर मैं बेनती करां, जे उदों अख खुली फिर ना खुली दे बराबर है, उदों होश आई ना आई दे बराबर है, क्योंकि हुण कुछ कर सकण दा समा साडे पास बाकी नहीं है। अगर कथा कीर्तन सुन के गुरबाणी पढ़ के संगत विच बह के कोई विचार शब्द दी करके अज होश आ जाए कि मरना पैना है, फिर ते साडे पास समा बाकी, अपना सुधार कर लवांगे, अपने लगे हुए दाग दोष जे

फरीद दर दरवेशी कखड़ी चलना दुनिया पत बन उठाई पोटली किथे वंजा कत फरीदा दर दरवेशी गखड़ी चलना दुनिया पत

दीनानाथ मया करू शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधुवे जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी तिस राखु हो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मुरार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जियो खरीदा

थाके कन सुन सुन के थक गए, थाके नैन श्रवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया ए तेरा सुंदर शरीर, चल चल के बोल बोल के कर कर के वेख वेख के दौड़ फिर करके थक गया। गुरबाणी दा वचन है, थाके नैन श्रवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया जरा हाक दी सब मत थाकी, एक न था कसमाया। जरा जरा मैंने बुढ़ापा, गुरबाणी ने बुढ़ापे नु एक रोग बयान किया है, रोग बुढ़ापा अपने आप दे अंदर ही रोग है। गुरबाणी दा एक वचन है कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जरा मैंने बुढ़ापा कह लगे जिन्ना समा बुढ़ापे दा रोग तेरे ते नहीं आया, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी, हे मेरे मना परमात्मा नु उन्ना समा जपन दा यतन कर। भजले रे मन सारंग पानी, त्यागा एक प्रश्न कर दिता, तनज भरिया प्रश्न, कहन लगे अपना भजस भजस कब पाई, हुण ते तू रब नू नहीं जपदा, रब दे राह ते चलदा नहीं, चलेगा कदों। अपना भजस भजस कब पाई, आवे अंत ना भजया जाई, कहन लगे अंतला पा लाएगा ते फिर जपना भी चाहेगा जपया जाएगा नहीं, बहना भी चाहेगा बह पाएगा नहीं, गुरुद्वारे आना भी चाहेगा आ सकेगा नहीं, नित नेम बाणी दा जाप करना चाहेगा कर सकेगा नहीं, किसे दा भला करना चाहेगा हथां दे नाल नहीं कर सकेगा, सेवा करना चाहेगा नहीं कर सकेगा, क्योंकि शरीर थक गया। जरा हाक दी बुढ़ापे ने आन के ना आवाज दे दी कि सजना तैयार हो मैं आ गया है, तू लख दवाइयां खा, लख एक्सरसाइज कर, लख कुचले खा, शरीर तेरा बिल्कुल नरोई हड्डी वाला होवे, अरोग होवे, सब कुछ हुंदिया सुंदिया भी बुढ़ापा इना ताकतवरे आण के बह ही जांदा है। मैनू एक अदीब दे दो बोल चेते विच आए, वो कहिंदा है दो लफजों में पोशीदा मेरी कहानी है। पोशीदा कहिंदे ने लुकी हुई, फारसी दा लफज है, पोशीदा लुकी हुई, कहिंदा है दो लफजां दे अंदर मेरे जीवन दी कथा लुकी पई है। उदीप कहिंदा है दो लफजों में पोशीदा मेरी कहानी है, एक लफज बुढ़ापा है, दूजा लफज जवानी है, इस आलमे फानी की क्या बात करूं, अंजाम बुढ़ापा है, आगाज जवानी है, आगाज मैंने शुरुआत, शुरुआत तो बाद अगे उदा अंजाम उदा फल, कहन लगे अंजाम बुढ़ापा है, आगाज जवानी है, ये आलम फानी भी खूब है, 100 दिन का बुढ़ापा है, 2 दिन की जवानी है, ये 4 दिन दी बहार है सजनो, इन्हे टिकना तुहाडे कोल नहीं, इस जवानी नू सवारना चाहो सवार लो, ते बिगाड़ना चाहो बिगाड़ लो, ये तुहाडा अपना फैसला है, तुहाडी अपनी जवानी अपना जीवन तुहाडा अपना फैसला। पर भगत जी कहिंदे ने फरीदा देख फरीदा जो थिया दाड़ी हुई पूर, कहन लगे तेरी दाड़ी पूर हो गई, तू बुढ़ा हो गया, अगों नेड़ा आया, अगा नेड़े नेड़े आ रहा है, मौत नेड़े नेड़े आ रही है। हुण इत्थे मैं अद्धा मिनट फिर तुहाडा लेना चाहांगा, असी एक एक कदम चलदे चलदे रोज मौत वल नूं जा रहे हां, मौत वल नूं, मौत तों भज के दूर नहीं जा रहे, मौत वल नूं जा रहे हां, रोज मौत वल नूं। अपने शरीर नूं बड़े ध्यान दे नाल वेखो, साडे विचों रोज ही कुछ ना कुछ मरदा होया सानू नजर पैंदा है, कदी अखां दी रोशनी मर जांदी है, कदी कन्नां दी स्रोत शक्ति मर जांदी है, कदी मेदे दी पाचन क्रिया मर जांदी है, कदी दंद मर जांदे ने, कदी गला मर जांदा है, कदी किडनियां मर जांदियां ने, कदी हार्ट ब्रेन मर जांदा है, मरण दा मतलब जो वापस नहीं आउंदा, ए मरदियां मरदियां सहजे सहजे गिट्टे गोडियां दा बल मर जांदा है, बड़े बड़े जवान पहलवान ओ मायूस हो जांदे ने, मुथाज हो जांदे ने, क्योंकि शरीर दी ताकत मर गई है, ते मरदियां मरदियां पल पल कदम कदम करदियां करदियां ओ मुकाम आ जांदा है जद मरन वाला बाकी कुछ बचदा ही नहीं है। मौत जिस दिन आउंदी है मरन वाला बाकी कुछ रह ही नहीं जांदा, सब कुछ मर चुका है, सब कुछ मर चुका।

0: उस वक्त बंदे नूं आउंदी होश कि मैं कुछ कीता नहीं। ते मैनूं फिर एक उर्दू दे शायर दा बोल चेते विच आउंदा है, वो कहिंदा है जब किश्ती सलामत थी, कहिंदा है जदों तेरे जीवन दी बेड़ी बिल्कुल साबत सी, बिल्कुल सलामत सी, जब किश्ती सलामत थी मंजिल की तमन्ना किसको थी, अब किश्ती पे ऐसी शिकस्त मंजिल की तमन्ना कौन करे। वो कहिंदा है जदों तेरी किश्ती सी सलामत उदों ते तू मंजिल वल जाण दा ध्यान कीता ही ना कि मेरी मंजिल कोई है, कोई परमात्मा रूपी चीज है, मैं उनु पाउना है, मैं उदे नाल जुड़ना है, उदे राह ते चलना है। मंजिल की तमन्ना किसको थी, अब किस्ती पे ऐसी शिकस्ता, हुन तेरी किस्ती हो गई है कमजोर, किस्ती हो गई है पुरानी, कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे शेक हजार, हुन ते हजारा सुराख बन गए ने तेरी बेड़ी दे अंदर, बेड़ा जर्जरा, जर्जरा कहिंदे ने पुराने ते कमजोर नूं, शिकस्ता भी कहिंदे ने जिहड़ी पुरानी ते कमजोर बेड़ी होवे। आख्या कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे छेक हजार, हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार। एक ते बंदे दा अपना वजन होवे बहुता, उत्ते पत्थरां दी माला इन्ने पाई होवे गल विच, वजन होवे दे सिर ते, तरना आउंदा ना होवे, सहारा देन वाला कोई नेड़े तेड़े होवे ना, इस तरह दा बंदा दरिया विच डुबेगा ही ना, बचन दा ते कोई उपाय नहीं, ना तैरन दी जाच, ना कोई सहारा, ना कोई बेड़ी, शरीर दा वजन पारा, ते उत्तों सिर दे उत्ते पंड बन के रखी पत्थरां दी, हरवे हरवे। जिन्हां ने पापा अपराधां दा बोझ मौत आउण तों पहलां पहलां अपने उत्तों ला के पासे कर दिता है, अपने आप नूं हौलियां कर लिया, बंधना तों मुक्त कर लिया है मौत आउण तों पहलां पहलां, कबीर साहब कहिंदे ने ओह ते जाणगे तार, पवजल की ए दुखां दा सागर, ओह ते तर जाणगे ते डूबे जिन सिर पार, जिन्हां दे सिर ते भार बड़ा है, रूह दे उत्ते भार बड़ा है, ते भार कादे कीते होए गुनाहां दा, अपराधां दा, पापां दा, ओह डुबणगे वच डुबणगे, उहनां नूं तारण वाला कौन है। तो खैर एक जगह दे उत्ते भगत भीखण साहब जी दे बोल मैं पढ़ के बड़ा हैरान होया, भगत फरीद साहब जी दी बाणी दी व्याख्या मैं बाणी विच्चों ही तुहाडे सामने रख रहा। भगत जी कहिंदे ने भगत भीखण जी, नैनो नीर बह तन खीना पै केस दुधवानी, नैनो नैनो मैंने अखां, नैनो नीर बह, बुढ़ापे दी निशानी मैं तुहाडे सामने अर्ज कर रहा सन, जवानी दे अंदर ए अखां हिरन वर्गियां अखां, सब तो सुंदर अखां हिरन दियां मन्नियां गईयां ने, अखां दी गल करन वालियां विद्वानां ने ए कहा कि मृग नैन सब तो सुंदर हुंदे ने, जवानी दे अंदर अपने अखां दे नाल लोकां नूं अपने बस विच करन दा यतन करदा सी, अखां दे नाल मोह लैंदा सी, अखां सुंदर बड़ियां सन, डेले मोटे सन, दिख चंगी सी, पर बुढ़ापा की आया, दवाई दारू करदिया करदिया अपने आप ही इन्हां विचों पानी वगना शुरू हुंदा, पानी दिने भी वगी जांदा है, पानी रात भी वगी जांदा है, इन्हां दी सुंदरता चली गई, किधरे उडारी भर के दूर जाके बह गई। कहन लगे नैनो नीर बह तन खीना, खीना मैंने कमजोर, ते तेरा तन सारे दा सारा कमजोर होया, ना जवानी वाली सुंदरता चेहरे ते रही, ना जवानी वाला बल शरीर विच रहा। कहन लगे नैनो नीर बह तन खीना पै केस दुधवानी, इन्हां दा रंग बदल के चिट्टा दुध वर्गा होया, पै केस दुधवानी, रूता कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे पुराने, गला तेरा बोलन तो जवाब दे गया, जुबान तेरी बोल दी नहीं, बैठा जांदा नहीं, चलिया जांदा नहीं, ते हुण रब दी आस करे वी किवें, हुण ते वेला व्याह चुका है, बीत चुका है। खैर फिर भी जे तू मन करके परमात्मा नूं याद करना शुरू करे बुढ़ापे दे अंदर, ते रब फिर भी बौड़ी करेगा, रब फिर भी आण के तेरी सार लहेगा, खबर लहेगा, पर असें ते ना जवानी दे अंदर ना बुढ़ापे दे अंदर। जिहड़े तुहाडे विचों रब्बी पेंडे दे राही बन के चल रहे ने, उहनां नूं करोड़ करोड़ वार नमस्कार भी ते उहनां नूं वधाई भी, चल तुसीं रहे हो फायदा तुहाडा है, पर वधाई तुहानूं गुरु घर वल्लों मिलेगी, क्यों, क्योंकि तुसीं चलते रहे हो ना, उहनां दा की करोगे जिहड़े तुरे ही नहीं, उहनां दा की करोगे जिहड़े चले ही नहीं है। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਪ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਿਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ, ਸਿਤਾਬ ਮੈਨੇ ਜਲਦੀ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਬਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੀਬਾਨ ਮੈਨੇ ਕਚਹਿਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਬਾਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਬਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਤ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਰਜੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਦੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਜੋਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਗਾਂਵ ਕਿਛ ਬਾਕੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮੌਤ ਰਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਗਰਾਈ ਕਰਨਾ ਵਿਆਰ ਪਿਆਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਗਾਮ ਗਾਮ ਮੈਨੇ ਪਿੰਡ ਗਾਮ ਕਿਛ ਬਾਕੀ ਲਿਓ ਨਬੇਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੁਕਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਗਾਮ ਕਿਛ ਬਾਕੀ ਲਿਓ ਨਬੇਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਛ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਗਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵਿਆਰ ਪਿਆਰ ਵਹੀ ਖਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਗਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਗਰਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖਰਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਛ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋ, ਸੁਬਹ ਨਵਾਜ ਸਰਾਏ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਦਾ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵਕਤ ਮੰਗਾ ਜਬ ਵਕਤ ਤੰਗ ਆਇਆ, ਮਨ ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾ, ਜਬ ਪੁਰਜੇ ਪੁਰਜੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵਕਤ ਮੰਗਾ ਜਬ ਵਕਤ ਤੰਗ ਆਇਆ, ਜਦ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਕਤ ਅਤਿ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਵਕਤ ਮੰਗਦਾ, ਵਕਤ ਮੈਨੇ ਸਮਾਂ, ਸਮਾਂ ਕੋਲ ਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਅਧੂਰੀ, ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਭਾਵ ਵਕਤ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਵੀਰ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ, ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ, ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ, ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੌਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, जिस महल दे अंदर मौत प्रवेश ना कर दी होवे। हां एक दर है, जे आप उत्थे पहुंच बना लो ते जगह मैं दस देना, जाना तुहाडा काम है। रब जी दे घर दे अंदर कदी मौत प्रवेश नहीं होई, अज तक मौत नहीं गई। जो रब जी दे महल विच प्रवेश कर जांदा है, वो वार वार मरदा नहीं ते वार वार जमदा भी नहीं, उत्थे मौत नहीं जांदी, उत्थों दूर रहिंदी, बाकी सब थावां ते आउंदी है। कहन लगे अगों नेड़ा आया पिछा रहा दूर, पिछा मतलब जन्म वाला दिन, वह दूर रह गया, मौत नेड़े है। मैं पिछलिया दिनों दे अंदर अर्ज गुजारी सी, भावे 90 साल पहला जन्म होया है, पर जन्म अज भी मनाउंदा है, अज भी अरदास करदा है जन्म होया है। मौत भावे 90 सकिंटा नूं आण के दरवाजा खड़का दे, मौत नूं पलाउण दा यतन करदा है। मौत सही ढंग दे नाल कन्ना विच लफज पै जाए ते अंदर कंब जांदा है, नहीं नहीं नहीं अजे ते मेरी मरण दी सलाह नहीं है, मौत तो नठण दा यतन करदा है। अगला श्लोक भगत फरीद साहब जी दा, कहन लगे देख फरीदा जेथिया, कहन लगे मैं होर तेरे जीवन दा तजर्बा तेरे सामने रखा। भगत फरीद साहब कहिंदे ने, कहन लगे जो होया जो बीतिया ते तेरे जीवन विच मैं ओही तेनू याद करवा रहा अपने कोलों कुछ ने। भगत जी की, कहन लगे शक्कर होई विस, मिठा शक्कर विस बन गई, विस मैंने जहर बन गई, शक्कर होई विस। एक बेनती करा, शक्कर विस किवें बनदी, मिठा ते मिठा ही है ना, और विस विस ही है, जहर जहर है, अमृत अमृत है। शरीर तुहाडा तुहाडे पास होवे, पर ये शरीर तुहाडा बहुत कुछ कमा कमा के भंडार जमा भी कर चुका है, तन दौलत पदार्थ दे अंबार लगे पै रहे, पर शरीर तुहाडा वर्तन दी समर्था विच नहीं है। उन्हां पदार्थां नूं तन दौलत नूं वर्तना चाहुंदा है, वर्तन दे योग नहीं है, वह सगों दुख दा कारण बन जांदे ने, सामने पै रोज रोज दुखी करदे ने। इन्हां नूं मैं कमाया सी वरतांगा, पर हुण शरीर जवाब दे गया, वरतां किवें। खाण दा अजे चा बाकी है, खाण दी चाहना तमन्ना बाकी है, पर करिए कि मेदा जवाब दे गया ते उह विस वर्गे लगदे ने, उह सगों दुखदाई लगदे ने। एक गरीब दे कोल है नहीं, चलो होर गल है, एक दे कोल भंडार भरे पए ने, पर उहनूं खाण दा हुक्म नहीं, उह फिर दुख दा कारण ही बन गया ना, दुख दा ही बायस बन गया ना। कोल पदार्थ होण पर खाण दा हुक्म ना होवे, कोल लम्मे चौड़े पदार्थां दे अंबार होण, कपड़ा होवे पर चमड़ी दा रोग कोई इस तरह दा होवे, कपड़ा हंडाउण दा हुक्म ना होवे, ते फिर वह कपड़ा भी वेसी बन गया ना। महल माड़ियां सब कुछ कोल है, पर अंदर वसण दा हुक्म नहीं है, फिर वह वैसी बन गया ना। जिन्हां धीआं पुत्रां वास्ते तू जफर जाल के खोई जाल पा के 20-20 घंटे कम करदा रहा, उन्हां नूं तू एक महल बना के तैयार करके दिता, उन्होंने तेनू बुढ़ापे दे अंदर धक्के मार के बाहर कढ़िया, वह महल तेरे लिए वेसी बन गया ना। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਫਰ ਜਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਕਰ ਹੋਈ ਵਿਸ, ਸਾਈ ਬਾਜੋਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦਨ ਕਹੀਏ ਕਿਸ, ਵੇਦਨ ਮੈਨੇ ਪੀੜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵੇਦਨ ਤੇਰੀ ਪੀੜਾ ਜੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੀ ਪੀੜਾ ਤੇਰੀ ਵੇਦਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਨ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਵੇਦਨ ਸੁਣੇ ਕੌਣ। ਵੇਦਨ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਦਨ ਸੁਣੇ ਕੌਣ। ਵੇਦਨ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਵੇਦਨ ਸੁਣੇ ਕੌਣ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਦ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬਿਰਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੀੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਏ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮਟਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। तेरे दुख दलिद्र नू घटाउणा नहीं जानदा। भगत जी कहण लगे हालात तेरी सजना इस तरह दी बन गई है कि तेरे वास्ते मिठे पदार्थ भी जहर दे तुल बन गए, सक्कर होई विस, साहिं बाजो अपने दुनिया दे अंदर तेरी पीड़ा तेरी वेदन नू सुन वाला तेरा अपना कोई रहा नहीं, ते हुण कौन है तेरा अपना जिदे कोलों जन्म लेके मृत मंडल दे कोल आया से। सतनाम श्री वाहिगुरु तेरा अपना है, साई बाजो अपने वेदन कही है किस। कह लगे साई जी तो बगैर रब जी तो बगैर हुण अपनी वेदन बयान भी करें ते करें भी किन्ना। एक मैं होर बेनती करदा चला, कोक हुंदी है शीतल, शीतल मैंने ठंडी, पर ठंडी कोक नूं बाहर रख दिओ ते समा पा के ना वो बदल जांदी है। ठंडी कोक अपना सुभा बदल जाती है, उदी ठंड चली जाती है, सहजे सहजे गर्म होनी शुरू हो जाती है। जिन्ना समा बाहर रहेगी ठंड तो फ्रिज तो बाहर रहेगी गर्म होएगी। ए दूसरी उदाहरण जो मैं देनी चाहना, खिमा करो, शराब जिन्नी पुरानी हो जाए ना, जिन्नी पुरानी, मैं इतिहासकारा दे बोल पड़े, उन्ना उदा नशा बच जाता है, उन्ना नशा बच जाता है, म्यार बच जाती है। जे मनुखी मन दे अंदर रब्बी रस ना आए, ए शराब वर्गा ही बनिया रहे, जहरीला बनिया रहे, कौड़ा बनिया रहे, ते बुढ़ापे तक पहुंचदिया पहुंचदिया ए होर माया दी पकड़ विच आ जांदा है। शराब वांगे दा नशा वध जांदा है, विकार वध जांदे ने, गुणा वध जांदे ने, घटन दी बजाए रब वल आउण दी बजाए सगों उल्टे पासे नूं जांदा है। ते मैं भाई साहब भाई रविदास गुरदास साहब जी का एक बचन पढ़िया, उन्होंने बड़े आलमाना ढंग दे नाल एक बोल किया, कहन लगे कि अन्ना बोला पिंगला तन थका मन दह दिसता वे। कहन लगे अन्ना होया दिसना बंद होया, बोला होया सुनना बंद होया, पिंगला होया चलना बंद होया। अन्ना बोला पिंगला तन थका, तन ते तेरा गया है थक, मन तह दिसता वे, मन अजे भी काले कहां वांग दसा दिशावां नूं दौड़दा है। ये हुण तुसीं अपने उत्ते अजमा के वेखो, भाई साहब भाई गुरदास साहब जी दा बचन उह झूठ कह रहे ने जां सच कह रहे ने, ते जदों अपने जीवन विच ए बचन नूं कटा के वेखोगे नजर आ जाएगा भाई साहब जो कह रहे ने हकीकत ही कह रहे ने, सच्चाई बयान कर रहे ने, झूठ नहीं। खैर भगत फरीद साहब जी का अगला बचन मैं एक होर इस श्लोक दे नाल संबंधित तुहाडे सामने रखदा चला। कहन लगे फरीदा अखी देख पतीनिया, पतीनिया का मतलब हुंदा है थक जाना, पतलियां हो जाना, कमजोर हो जाना। अखां वेख वेख के थक गईयां ने, कमजोर हो गईयां ने, पतलियां पै गईयां ने। सुन सुन रीने कन्न, ते सुन सुन के तेरे कन्न भी कमजोर पै गए, वह भी घस गए। मैं एक होर कबीर साहब जी का बचन इस तो पहला तुहाडे सामने रखा। कबीर साहब कहिंदे ने कबीरा राम ना चेतियो जरा पहुंचो आए। कहन लगे राम तो चेतिया नहीं, जरा तेरे कोल पहुंच गया, बुढ़ापा तेरे कोल पहुंच गया। अगा कहिंदे ने लागी मंदर द्वार ते अब क्या निकसियो जाए। कहन लगे द्वार, द्वार मैंने दरवाजा, मंदर मैंने घर, मंदर दे दरवाजे उते, घर दे दरवाजे दे उते लग जाए अग, ते उस दरवाजे विचों ही ते सब कुछ बाहर कढ़ना सी, हुण बाहर कढ़ेगा कित्थों दी, आप निकलना है दरवाजे विचों, दरवाजे दे भांबड़ बल रहे, जे समान कढ़ना सी दरवाजे विचों ते दरवाजे ते अग बलदी नजर आ रही। कहन लगे हुण करेगा की, हुण बाहर कढ़ेगा की। बुढ़ापे दे अंदर आण के इहदे तमाम दरवाजिया नूं अग लगी हुई अजे भी नजर पैंदी है। अखां दे वेखण दी तमन्ना बाकी, कन्नां दे सुनण दी अजे चाहत बाकी है, जुबान बोलना चाहुंदी है, दंद चबाउणा चाहुंदे ने, अजे खाण दी मंग है, जीवन दी मंग है, पर अजे भी रब वाले दा ध्यान नहीं है, अजे भी परिपूर्ण परमात्मा चेते विच नहीं है। कहन लगे अखी देख पतीनिया सुन सुन रीने कन्न, शाख पकंदी आईया, जिमें टहनी दे नाल लगा होया फल पकदा पकदा, पत्ते पकदे पकदे बुढ़े हुंदे हुंदे अपना रंग बदल जांदे ने। फल भी पक के रंग बदला लैंदा है, ते पत्ते भी रंग बदल देंदे ने। ਹੋਰ ਕਰੇਂਦੀ ਵੰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵੀ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਹਾਰ ਬਸੰਤ ਵਾਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤੇ ਝੜਨ ਵਾਲੀ ਬਹਾਰ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦਾ ਅਵੱਛ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਰੋਤੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏ ਮਾਣ ਹੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਮੂਹ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ
1: ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ ਕਰ ਸਾਈ ਸਿਉਂ ਪਿਰਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਚਿਤ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮ ਨਾ ਲਗੇ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ ਇਹੋ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਪਾਵੈ ਤੈ ਦੇ ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ ਲੋਇਨ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਸੇ ਲੋਇਨ ਮੈਂ ਡਿੱਠ ਕਚਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੁਵੇ ਬਹਿਠ ਫਰੀਦਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ

जानई सिर पी मिट्टी खाए। फरीदा मैं पुलावा पगदा मत मैली होए जाए। गैला रूह ना जानई सिर पी मिट्टी खाए। फरीदा शक्कर खंड नीवात गुड़ माखियो मांजा तुत। सबे वस्तु मिठियां

मिठिया रब ना पूजन तुद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे श्लोकां विचों सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकागर करो, इस श्लोक नूं आधार बना के कुछ समझन ते समझाउण दा यतन करिए। फरीद साहब जी दा फरमान फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए। कहन लगे मनुख इस परम विच ते रहिंदा है कि बाहरों मेरे सिर दे उत्ते बची हुई पग मैली ना होवे। हकीकत है कि मनुख नूं जितनी खबर बाहर दी है उन्ना ही अंदर दी तरफों अनजान है। बाहर दे बारे समझ आ गई है, अंदर दे बारे समझ नहीं आई। अगर आई है ते बहुत थोड़ी आई है। यही कारण है जिन्ना साफ सफाई का ध्यान बाहर है उन्नी सफाई का ध्यान अंदर नहीं है। तन साफ होना चाहिए सब की तमन्ना है, मन साफ होना चाहिए किसी विरले विरले की लोचा है, सब की तमन्ना यह नहीं है। उस तो बाद तन दे कपड़े घर बार मोटर कार हर जगह जो शरीर दे बैन उठन दे कम आउंदी है वो साफ सुथरी चाहिए है। इते सब नू पता है, पर जिथे दीन दयाल निरंकार नू वसदा रसदा वेखना चाहुने आ मन साफ चाहिए है। ये किसी विरले विरले नू पता है, सब नू नहीं पता। तो इस तरह कह लिए कि लोग बाहर मुखी जीवन गुजार रहे ने, अंतर मुखी जीवन नहीं गुजार रहे। जब भी कोई रब जी दे राह दे उते अपने कदम रख के चलना शुरू करता है उदा ध्यान बाहरों हट के अपने अंदर वल जाना शुरू होता है। तो जब ध्यान अंतर मुखी होता है समझ आउंदी है अंदर बहुत कूड़ा करकट मैल ही मैल पई है, तो अपनी मैल नूं वेख के बंदा आप ही बेचैन हो जांदा है कि इतनी सारी मैल। अपनी मैल नूं वेख के अपने आप तो आप ही नफरत कर बैठदा है, इतनी सारी मैल ते ओह वी मेरे अंदर। मैं ते समझदा सा नहीं है पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो खैर ईसाई जगत दे अंदर ईसाई जगत दे बानी हजरत ईशा जी उन्होंने रब तो बाद नंबर दो दे उते सफाई नूं ही दर्जा दिता है। हजरत ईशा जी क्या करदे सन कि परमात्मा तो बाद अगर कोई साडा करना कर्म धर्म फर्ज बनदा है तो ओ ए है कि बाहर भी सफाई होवे ते अंदर भी सफाई होवे। चलो अंदर दी सफाई दे संबंध विच हर पैगंबर ने अवतारी तेरे बरी पुरश ने जोरदार बचना विच किया है कि मन पवित्र चाहिए साफ चाहिए। पर हजरत ईशा दी बाहर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने ते अंदर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने। जद तो मनुख ने होश संभाली है उदों तो लैके मैल अपने बाहर भी वेखदा आ रहा है ते मैल अपने अंदर भी वेखदा आ रहा है। ते फिर बाहर दी मैल दे संबंध विच इहदी कोई जानकारी है, इहनू कुछ ज्ञान है ते बाहर दी मैल नूं धोण दे इह साधन लभदा रहा, साधना दी खोजबीन करदा रहा ते बाहर दी मैल नूं हटाउण दा यतन भी करदा रहा। ओ मैल चाहे तन दे उत्ते या फिर तन दे उत्ते पए होए कपड़िया दे उत्ते, उस मैल नूं धोण दे साधन जुटाउंदा रहा, साधन लभदा रहा।
ਮੈਲ ਹਟਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੈਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਬੁਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਬੁਰਾ ਸੁਣਨਾ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਬਣਦੀ ਏ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣ ਸੋਚਣ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਏ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਮੈਲ ਬਣਦੀ ਏ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ, ਉਤਰਸ ਖੇਹੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇਸਾ ਗੋਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ, ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਚਿੱਕੜ ਲਵਰੇਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਜਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਫ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ, ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਧੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧੁਪੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਬੀਜ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਬੀਜ ਤੋਂ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਜੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਣਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਨਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣਾ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ, ਕਾਮੁਕ ਸੋਚ, ਕ੍ਰੋਧ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਸ਼ਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਘੜੀ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ, ਪਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਦੂਜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਨ ਆਰਾਮ ਪੂਰਵਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੋ ਪਾਪ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ,
लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ मनमुख हाँ, यह मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदे चला, डॉक्टर इकबाल ते इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसी होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रहे, पत्नी दे सामने हो रहे, धी दे सामने हो रहे, समाज दे सामने हो रहे, ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रहे। गिरकट अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनू बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करने वास्ते किसी दे घर वे जाना पिया है, उत्थे कोई सोख समाचार है, इहदे अंदर भावे गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनू आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसी दे व्याह दे अंदर, किसी दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसी दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है, अंदर भावे जैलसी है, अंदर भावे ईर्ष्या है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्होंने बधाई देन दी इहनू बड़ी चंगी तरह आदत है, कुशल है। ये जानता है कि खुशी दा मखौटा कदों पाउणा है ते गमी दा मखौटा कदों पाउणा है। खैरे मेरा विशा नहीं सी, अंदर जो बुराई है उदा ना पाप, जो बार बुराई प्रगट होके आ जाती है उदा ना अपराध। बस एक नुक्ता याद रखो, अपराध बार हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध ताई बनदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समा मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा कित्थे। अगर जमीन विच तुसी बीज अंबां दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह दी फसल दा बीज बीजदा है उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं, पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने मुढ़ तो, उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहनियां कट दई है, उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी ये मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने तो उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ, पत्ते नवे आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो फुल नवे आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो फल फिर समा पा के नवे आ जांदे ने, टहनिया नूं आप कट देंदे हो दो टहनिया कट दे हो, दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहने दे उत्ते नवीं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहनी नूं कट रहे हो दूजी नवीं जन्म लै रही है। यह सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रह गए ते ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करते हैं, कहन लगे भरी है मत पापा कै संग, अंदर किवें भरदा है।

शक्कर खंड निवात मिश्री गुड़ माखियो शहद मज दा दुध सारियां ही वस्तुआं चंगियां ने मिठियां ने पर जे कहिए कि इन्हां विचों किसे एक दा रस रब्बी रस वर्गा है ते भगत फरीद साहब जी कहन लगे ए रब दी तोहीन होएगी। रब दे बराबर इन्हां विचों कोई भी रस नहीं अपड़दा, रब दे बराबर कोई भी रस इन्हां विचों नहीं पहुंचदा। सबे वस्तु मिठिया रब ना उजन तुद। अगला श्लोक भी भगत फरीद साहब जी का है पर रहस्यमई श्लोक है। अगले श्लोक नूं भी ध्यान दे के उचेचे तौर दे उते समझना पएगा। अगा कहिंदे ने फरीदा रोटी मेरी काठ की लावन मेरी भुख। इनू लावन नहीं पढ़ना। अगर लल्ले दे पैर हेठ अद्धा हाहा लाओगे बन जाएगा लावन। लावन का अर्थ होएगा ला देन वाली चीज, मतलब ये ला देंदी है। ये बड़ा सरले लावन, लावन का आखरी अर्थ होंदा है सब्जी साग भाजी लाजमा जो आप रोटी दे नाल ला के खांदे हो लावन। और किसे पंजाबी दे कोश दे अंदर दे अर्थ जाके पढ़ लो लावन का आखरी अर्थ यही मिलेगा। सब्जी साग भाजी लाजमा जी दे नाल भोजन ला ला के खादा जाता है। हुण साखियां सुनियां पढ़ियां बचपन तो लैके कि फरीद साहब 12 साल जंगल दे अंदर फिरदे रहे। फरीद साहब भुख दे सताए घरों निकले, उन्होंने गले विच एक लक्कड़ दी रोटी बन ली। जदों भुख लगदी सी ते ओ लक्कड़ दी रोटी नूं चक मार लैंदे सन। एक गल नूं अपने जिहन दे अंदर वसा लो कि गुरबाणी दा एक ओंकार तो लैके अखीर तक आशा इको ही है। बाणी दा कॉन्सेप्ट इको ही है, सिद्धांत इको ही है। ए नहीं कि गुरु नानक साहब कुछ होर कह रहे ने ते गुरु अमरदास साहब कुछ होर कह रहे ने ते गुरु रामदास कुछ होर कह रहे ने ते गुरु तेग बहादुर साहब कुछ होर कह रहे ने या भगत फरीद साहब कुछ होर कहिंदे ने ते कबीर साहब कुछ होर कहिंदे ने। उन्हां सारयां दा नुकता निगाह इको ही है, सिद्धांत इको ही है। जो कह रहे ने इक दे संबंध विच कह रहे ने और हकीकत कह रहे ने। गुरबाणी दे अंदर वार वार इस तरह दे बचन आउंदे ने कि अन्ने अन्ने दा मतलब अनाज अन्न, अन्ने बिना ना हुए सुकाल, तजिए अन्न ना मिले गोपाल। गुरबाणी दा फैसला है अन्ने बिना ना हुए सुकाल, तजिए अन्न ना मिले गोपाल। शरीर नूं चलाए मान रखन ले, शरीर नूं जिंदा रखन ले अन्न चाहिदा है। और ए व्योंतबंदी ए सिद्धांत ए नियम रब ने बनाया, बंदे ने नहीं बनाया। अगर बंदे ने बनाया हुंदा ते रोटी तो बगैर कम चल सकदा सी, बंदे ने नहीं बनाया। बल्कि इस तरह हुंदा है पेट विच रोटी नहीं तो फिर शरीर दी जान ही निकलन वर्गी समझो हो जांदी है, नकारा जा हो जांदा है, थकिया हारिया जा हो जांदा है। रोटी खान तो बाद फिर तरोताजा हो जांदा है, कम करना शुरू कर देंदा है और पहला वर्गा। पंजाबी दे बुजुर्गां ने कहावत भी पैदा कर दित्ती कि पेट ना पईयां रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां। महाराज ये कर रहा सा कि शरीर नूं जिंदा रखन लई रोटी चाहीदी है, रूह नूं जिंदा रखन लई रब्बी गुण चाहीदे ने, मन नूं ताजा रखन लई मन नूं परमात्मा दे राह ते चलदा रखन लई परमात्मा दे गुण चाहीदे ने। शरीर नूं जिंदा रखन लई भोजन चाहीदा। इस तरह कह लो भोजन दी लोड़ है ते भजन दी लोड़ है, दोवां चीजां दी लोड़ है ते बराबर लोड़ है। और भोजन गुरु साहिबान भी करदे रहे, भोजन भगत जन भी करदे रहे ते भगत फरीद साहब जी ने भोजन छड्डिया क्यों? जे भगत फरीद साहब जी भोजन छड्ड रहे ने इहदा मतलब निरंकार दे सिद्धांत दे विरोध विच जा रहे ने, ते जिहड़ा निरंकार दे विरोध विच जा रहा है उहदी बाणी नूं गुरु नानक साहब जी ने इस बाणी दे अंदर जगह क्यों देनी सी? अपनी बाणी दे बराबर भगत फरीद साहब दी बाणी नूं लिया क्यों लिया? क्योंकि भगत फरीद साहब दी बाणी विचों भी उही आशा मिल रहा है जो मेरे बोलां विचों सिख जगत नूं या पैरोकारां नूं मिलेगा। कबीर साहब नूं पढ़ो ते कबीर साहब दा वचन भी इस तरह ही आउंदा है कि रोटी छड्डना गुनाह है। कहन लगे रोटी छड्ड के वरत रखने, चलो मैं एक बेनती होर करदा ही चला। वरत अज भी डॉक्टर वैद लोग कहिंदे ने कि कदी कदी हफ्ते महीने दे अंदर एक दिन भुखा रह जाना उचित है, योग है।

तन सुहागन नाओ सवरे पेय कंत की कंत अगम यथा नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह सोहरे पेय कंत की कंत अगम यथा नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र अते निकी गोता आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो आप रोज रोज सरवण करते आ रहे हो लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दी पवित्र बाणी विचों। अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए पहला श्लोक है अज न सुती कंत स्यो अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रहन बिहाए। पहला एक बेनती नु समझन दे यतन करो कि इस दुनिया दे अंदर औरत दा जामा ते पावे मर्द दा जामा है। जदों चर्चा परमात्मा दी चले उदों परमात्मा दे सामने आपां सारे नार दे रूप विच आ ते परमात्मा पति दे रूप विच है। इस जग में है पुरख एक है होर सगली नार सबाए। इत्थे जामे दा फर्क नहीं कि जामा औरत दा है जामा मर्द दा है। उपदेश ही कली औरत नूं है मर्द नूं उपदेश नहीं उपदेश सांझा है। गल परमात्मा दी चल रही है इस करके भगत फरीद साहब परमात्मा नूं कंत कहिंदे ने अपने आप नूं नार कहिंदे ने। वैसे भी तुहाडे ज्ञात लई मैं बेनती करदा चलां गुरबाणी नूं ध्यान दे के पढ़ो। गुरबाणी दे अंदर किधरे परमात्मा नूं मां किधरे पिता किधरे पुत्र किधरे भाई किधरे बंधु कह के बुलाया गया सत्कारिया गया। किधरे किधरे गुरबाणी दे अंदर परमात्मा नूं मालक ते स्वामी कहा गया गोपाल कहा गया। गुरबाणी दे अंदर परमात्मा दे संबंध विच कबीर साहब इस तरह भी कहिंदे ने कहे कबीर गुलाम घर का जी आए भावे मार। परमात्मा मैं तेरे दर दा गोला गुलाम हां और तेरी गिरफ्त विच हां हुण मर्जी तेरी है तू मैनू जिंदा रखे तां भला है तू मैनू मार देवे मेरा तां वी कोई इतराज नहीं। उत्थे अपने आप नू गोला ते परमात्मा नू मालक मन रहे ने। सूफी संतां ने तकरीबन तकरीबन परमात्मा नूं महबूब जानिया और अपने आप नूं महबूबा दी जगह दे उत्ते मन्निया है। तकरीबन सूफी संतां दा किरदार इस तरह दा है परमात्मा नूं महबूब मन्नदे ने अपने आप नूं महबूबा मन्नदे ने। तो जद परमात्मा महबूब है तो फिर लफज भी उस तरह दे वरतों विच लियाउणे पैणगे। भगत फरीद साहब जी ने लफज बयान किते अज न सुती कंत स्यो कंत मैने परमात्मा कंत दा आखरी अर्थ वैसे हुंदा है पति ते साडा पति कौन है परमात्मा। अज मैं पति परमात्मा दा मलाप नहीं जानिया पति परमात्मा दे नेड़े नहीं हो सके। जीव स्त्री परमात्मा दे संबंध विच कह रही है अज मैं परमात्मा दी नेड़ता नूं मन करके नहीं पा सके। ते परमात्मा दे नेड़े तन ते हुंदा नहीं हुंदा ते मन परमात्मा दे मलाप दा आनंद मन नूं मिलना है। मन ही परमात्मा पति दी शेज दे उत्ते जाएगा तन दा जाना ही बड़ा मुश्किल। तन किवें लैके जाओगे तन ने ते मर भी जाना है मुख भी जाना है
तन बिरद भी हो जाता है, तन सड़ भी जाता है, तन पसम भी हो जाता है। जाना मन ने है परमात्मा दे दर दे उते। अच मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जोड़ पाया। जोड़दा समय रोज रोज सुबह तो शाम तक परमात्मा दे नाल अल्लाह दे नाल अपने मन नूं। अज किसे कारण दे करके मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़िया। मैं परमात्मा दे नाल सौ नहीं सकिया। सौन दा मतलब है मिलना। अंग मुड़े मुड़े जाए मेरे सारे शरीर दे अंदर बेचैनी है, मन दे अंदर बेचैनी है। ते बेचैनी किथे बनदी? मन दे अंदर। मिलाप दा रस किथे बनदा? मन दे अंदर। मिलन वाला कौन है? मन। अज मेरे मन दे अंदर बेचैनी है। बेचैनी किस गल दी है? क्योंकि जो परमात्मा रोज रोज मिलदा सी उनु मिलन करके कोई ना कोई नवा रस जीवन दे अंदर रोज बनदा सी, नवा रस रोज पैदा हुंदा सी। अज परमात्मा दा मिलाप भी नहीं हो सकिया। किसे कारण मैं परमात्मा नु आराध नहीं सकिया। अज ओ रस भी नहीं बनिया। ते रस नहीं बनिया ते मन दे अंदर चिड़चिड़ापन ते क्रोध दा जन्म होया। तुहाडे विचों जिहड़े कुछ प्रेमी रोज अमृत वेले जागण वाले ने, नितनेम करन वाले ने, या कुछ सज्जन अभ्यासी ने, उन्हां नूं मेरी बेनती दी पकड़ ज्यादा आएगी। किसे मजबूरी दे कारण किसे दिन अमृत वेले ना जाग सकन, या किसे मजबूरी दे कारण, कम कार दे कारण, या शरीर ठीक ना होवे इस कारण नितनेम ना कर सकन, या कोई थोड़ा समा बह के परमात्मा दे नाल सुरत नूं ना जोड़ सकन, सारा दिन उन्हां दा इस तरह बीतदा है जिवें कोई बड़ी कीमती चीज जेब दे अंदरों निकल के ते गुम हो गई है। सारा दिन, सारा दिन उन्हां दा चिड़चिड़ेपन दे अंदर, क्रोध दे अंदर रहिंदा है। सारा दिन बेचैनी विच बीतदा है। क्यों? क्योंकि जो रस रोज रोज मिलदा सी ओ रस अज नहीं मिलिया। रोज अमृत वेले जागदा सी अज जागया नहीं गया। रोज नित नेम दियां बाणियां दा जाप करदा सी अज कीता नहीं गया। रोज सुरत नूं शब्द दे नाल जोड़न दा तहैया करदा सी अज नहीं जोड़ सकिया। तो जो रोज रोज खुराक खाण दी मन नूं आदत पै जाए, ओ किसे दिन खुराक ना मिले ते मन फिर रोएगा, मन कलपेगा कि अज ओ खुराक दित्ती क्यों नहीं। अज ओ भोजन जो रोज रोज मिलदा सी अज ओ भोजन किथे गया, क्यों नहीं मिलिया। मन इस तरह बेचैन हो जांदा है। और इस मेरी बेनती दी समझ सारिआं नूं ते नहीं पएगी। आप जितने हो उन्हां नूं समझ पएगी जिन्हां ने रोज रोज मन नूं नाम दा रस देण दा आदि बना लिया है, जिन्हां ने रोज रोज मन नूं परमात्मा दे नाल जोड़ के रस देण दी आदत पा ली है, उन्हां नूं मेरी बेनती दी समझ ज्यादा आएगी। वैसे भी जीवन जिहड़ा साडा चलदा है ओह चलदा ही रस दा बजा होया है। इह जिहड़ा शब्द है, शब्द दे अंदर रस दा ही जिक्र है कि अज कंत मिलिया नहीं ते रस नहीं मिलिया ते मेरे अंग टुट रहे ने, मन मेरा बेचैन है, मन विच चिड़चिड़ापन है। ते मैं उन्हां दोहागना नूं पुछदा जिन्हां ने कदी कंत दे नाल बहन दी जात सिखी नहीं, कंत दे मिलाप दा रस पाया ही नहीं, कि तुहाडी जीवन रूपी रात किस तरह बीतदी। तुम क्यों रहण बिहाए रहण मैंने रात, ते गुरबाणी नूं ध्यान दे के पढ़ो जीवन सारा ही एक रात है। हजूर दा फरमान, एक रैन के पाहुन तुम आए पाहुन मैंने प्रौणे। कहन लगे एक रात दा प्रौणा बन के आया है, बहु जुग आस बंदाए, ते लम्मियां जुगां जुगांतरां दियां आसां ला के बह गया है, आया है केवल एक रात वास्ते। एक रैन के पाहुन तुम आए। तो अर्ज मैं कर रहा सा, साडा जीवन चलदा है रस दे आसरे। और वो रस सानू मिलदा है मां कोलों, रस मिलदा है पिता दे पासों, रस मिल जांदा है अगे चल के पत्नी कोलों, पति कोलों, तियां कोलों, पुत्रां कोलों, कुछ रस सानू कपड़े कोलों, कुछ रस सानू भोजन पासों, ते कुछ रस सानू बाकी दे समूह पदार्थां कोलों। पदार्थां कोलों, परिवार कोलों मनुखी जीवन दे अंदर रस बनदा है ते रोज बनदा है। हुण जिस मनुख दे जीवन दे अंदर
मां भी ना रहे, पिता भी ना रहे, पत्नी भी ना रहे, पति भी ना रहे, तिया पुत्र भी किनारा कर जन, ते पदार्था वालों भी बिलकुल नगन हो जाए, मुफलस हो जाए, अति गरीब बन जाए, पदार्थ भी ना रहे, तन दौलत भी ना रहे, शरीर की तंदरुस्ती भी ना रहे। इस तरह के मनुख का जीवन बेरसा हुंदा है, बेरसा, क्योंकि जीवन चलना है किसी रस के आसरे ते। रस मिलता है सानू काम क्रोध लोभ मोह हंकार विचों, रस मिलता है सानू परिवार विचों, रस मिलता है पदार्थ विचों। हुण परिवार भी किनारा करके चला गया, पदार्थ भी कोल नहीं रहे, ते शरीर की तंदरुस्ती भी नहीं रही, तो कहना पेगा ना जीवन बेरसा है। इस तरह का मनुख हार के कदी कदी एक फैसला ले लैंदा है कि जद मेरे कोल हुण रस ही नहीं, तो हुण मैं जीवन नूं रख के करना भी की है, जीवन दी लीला नूं खत्म कर दई है। तो इस तरह का मनुख फैसला लैंदा है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे हम, मरकर बिना चैन आया तो किधर जाएंगे हम। वो कहिंदा है कि हुण अपने आप दी हत्या कर ली है, आत्म हत्यारा बन जाना चाहिए, अपने जीवन दी लीला अपने हथां दे नाल समाप्त कर लेनी योग है। पुछिए क्यों, वो कहिंदा है जद जीवन दे अंदर रस ही नहीं, तो जीवन रख के करना भी की है, मां भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, भैन भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तंदरुस्ती भी नहीं है, ते फिर उस तो बाद पदार्थ भी नहीं है, कुछ भी ते कोल नहीं, तो जद कुछ भी पास